प्रेम कम हो सकता है कभी नहीं, लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूँ तुमसे। मैं जा रहा हूँ इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूँ मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे। अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा, और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव।
उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे। उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार

ऐसी शिराद श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

राधा नाम का ये अक्षर बस जाता है, क्योंकि इंसान ही नहीं, खुद कृष्ण भी

इतना प्रेम है राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा उसकी

उन दोनों के चरणों से हमारी प्रीति हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए। कैसा है प्रभु,

यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है, वो भक्त नहीं है, वो साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम में है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी। कैसे समा सकती है? लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका, भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है, इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जिंदगी में हर दिन हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, लेकिन कई बार कंफ्यूजन, फियर या ओवरथिंकिंग की वजह से सही डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आखिर क्लियर डिसीजन मेकिंग कैसे पॉसिबल है और क्या हम इमोशनली बैलेंस्ड होकर बेटर डिसीजंस ले सकते हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। वेलकम मैम।
1: ओम शांति। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीनिंगफुल डिस्कशन ऑन डिसीजन मेकिंग। ओके ज्योति जी, क्या ओवरथिंकिंग डिसीजंस मेकिंग को वीक बनाता है?
1: जैसा कि शब्द में ही आ रहा है ओवरथिंकिंग।
0: जी,
1: तो ओवर किसी भी चीज की होगी तो वो हमें क्या करेगी हम खुद समझ सकते हैं।
0: जी,
1: किसी भी चीज की एक्सेस बढ़ जाना वो हमें कभी भी सुख नहीं देती है, हमेशा ही कहीं ना कहीं कष्ट देती है। और अगर हमारी सोच बहुत ज़्यादा चल रही है, ओवर थिंकिंग है हमारी, तो वो हमारी कोई भी डिसीजन को कमज़ोर इसलिए बनाती है क्योंकि हमारे पास टू मच ऑप्शंस होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और हम उसमें डाउट क्रिएट करते रहते कौन सा बेस्ट होगा, कंपैरिजन में आ जाते हैं, एक दूसरी चीज़ों को देखने लग जाते हैं। फिर अगर डिसीजन फाइनली ले भी लें तो भी हम डाउटफुली रहते हैं कि शायद वो डिसीजन ले लेते तो बहुत अच्छा होता। माने हम खुद भी डिसीजन लेते हुए भी उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो नेचुरली है कि जितना ज़्यादा सोच होगी, जितने ज़्यादा हम बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे, तो उतना ही हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस हम खुद भी अपने डिसीजन में फील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारी ड्रेसेस हैं हमारे सामने, डिज़ाइन है, बहुत सारे कलर्स हैं, तो हमें चूज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल फील होती है। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर उसमें कुछ ही चॉइस है हमारे पास तो उसमें हम बेस्ट सेलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि ये बेस्ट है और उसमें हम खुद भी सेटिस्फाइड होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कोई भी तरह की अधिक सोच होना, और आज की डेट में अगर हम कहें तो ओवरथिंकिंग नेगेटिविटी में ज़्यादा जा रही है। एक है कि पॉजिटिव में हो तो थोड़ा फिर भी हम स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी के अंदर अगर हमारी बहुत ज़्यादा ओवर थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा हम सोच रहे हैं, तो कभी भी हमें सही डिसीजन नहीं मिलता है और हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हम अधूरापन, कुछ ना कुछ हम हमेशा ही अपने डिसीजन पर डाउटफुल रहते हैं और हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जब हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरे भी उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेते वक्त फियर को कैसे हैंडल करें?
1: जी, फियर को हैंडल करना है, लेकिन फियर जो मैं समझती हूँ कि जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जब जन्म लिया तब से ही कहीं ना कहीं फियर है, और उस फियर को हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं या हम उसे किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये टोटली मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि फियर का अगर हम फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो इसका फियर का होता है कि फेस एवरीथिंग
0: बिल्कुल
1: एंड राइज, कि आप हर चीज को फेस करें और राइज करें, यानी आगे निकले, या कि दूसरा मतलब भी हो सकता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, कि आप सब कुछ भूल जाएं और भाग जाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं सिचुएशन को कैसे देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी लाइफ की इम्पोर्टेंट डिसीजन है। अगर मैं भाग जाऊंगा तो मैं कब तक भागूंगा, कहाँ तक भागूंगा? लेकिन डर अगर मुझे लग रहा है तो सबसे पहले अपने आप से पूछें कि किस चीज का डर है।
0: बिल्कुल।
1: मुझे लोगों का डर है, मुझे खुद का डर है कि मैं कैपेसिटी रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, या मुझे लोड का डर लग रहा है कि भाई आगे क्या होगा मेरा।
0: जी,
1: आपको किस बात का डर है वो पहले अपने आप से पूछें। उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी काम लाइफ में, जो भी बड़ा डिसीजन लेना है, लेना जब पड़ता है तब 100% श्योरिटी हमें कभी भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे माँ बाप वहाँ सामने नहीं खड़े हैं कि वो हमारे को हर चीज़ का 100% श्योरिटी या हमारे को जो चीज़ें हैं आराम दे सकते हैं, कोजीनेस दे सकते हैं, वो होगा ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: आपको कहीं ना कहीं खड़े होना पड़ेगा जहाँ सिर्फ 10% ही आपको लगता है अचीव हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना है। तो कई चीज़ें हैं जो आपको अपने आप से पूछनी है, अपने आसपास देखनी है। इन्फॉर्मेशन आप गेन कीजिए, जितनी इन्फॉर्मेशन आप गेन करेंगे आपका डर अपने आप कम होता जाएगा। लेकिन अगर मैं इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं आगे की चीज़ों को समझ नहीं रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो भी चीज़ें मुझे डर आती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा तो अंधकार से भी डर जाता है। जो पीछे का कमरा है उसके घर का, दो ही कमरे हैं घर में, लेकिन वो पीछे के कमरे में जाने से डर है क्योंकि वहाँ अंधेरा है। लेकिन वहीं उनके पापा या उनकी जो माँ है वो जाने से नहीं डर रहे, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि बस एक स्विच ऑन किया और अंधेरा दूर हो जाएगा।
0: जी।
1: तो जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तो हमारा डर काफी हद तक दूर हो जाता है। तो अगर डर को दूर करना है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कीजिए। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम है तो उसको बढ़ाइए। 100% श्योरिटी अगर आपको लेनी है तो इन्फॉर्मेशन को जितना आप बढ़ाएंगे आपका डर दूर होता चला जाएगा।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। हम अक्सर इजी ऑप्शन चूज करते हैं भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो ऐसा क्यों होता है कि इजी ऑप्शन हम चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ राइट वन? इस पे आप दोनों का क्या कहना है?
1: इजी इसलिए क्योंकि हम आज की डेट में रिस्क जोन में जाना नहीं चाहते।
0: बिल्कुल,
1: हमें ऐसा लगता है कि इजी ऑप्शन ले और जो अभी अभी अभी बस हमें तुरंत का हमें जो रिजल्ट मिले उससे हमें बस निकलना है, आगे की बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जिसको हम कहें कि जब समझदार जिसको कहा जाता है, तो समझदारी जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है तो कहते भी हैं कि एक्सपीरियंस से हमें समझदारी मिलती जाती है
0: जी।
1: तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी हम अगर रिस्क जोन में नहीं जा रहे हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल होने के लिए हमें रिस्क जोन के अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपना कंफर्ट देख रहे हैं और उसके अंदर वो भी इसलिए कि अभी तुरंत में, जैसे कई बार कोई बात के लिए हमें कोई समझाता भी है तो हम उसको चाहते हैं कि अभी फिलहाल हमसे कोई कुछ ना कहे और अभी हमें छोड़ दे, ठीक है हम जैसा भी है हम देख लेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद हम खुद चेक करें तो वही चीज जो उस दिन हमने छोड़ दी थी, हमने नहीं सुना, बाद में जा करके हमारे लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और बहुत सारी चीजों को हमें सफर करना पड़ जाता है। इसलिए इजी चॉइस को चुनना गलत नहीं है। हर बार मैं नहीं कहूंगी कि इजी चॉइस को चुनना गलत होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि हमारे इजी डिसीजन अगर राइट नहीं है और तब भी हम इजी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो वो तो अपने आप में ही हम बहुत बड़े रिस्क की तरफ जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम रिस्क से बच रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि बचपन में अगर खेल कूद में बिता दिया तो फिर आगे जाकर हमें मेहनत करनी पड़ती है।
0: हाँ जी।
1: और अगर हमने बचपन में अपनी स्टडीज पर अपनी मेहनत की है, अपने जो भी हमारे को दिया गया है एम उस पर अगर हमने फोकस किया है तो आगे जाके हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो कहीं ना कहीं तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो हमें रिस्क जोन में जाना है। तो फिर हमें एक पल के लिए जरूर सोचना चाहिए कि अगर ये राइट नहीं है, कंफर्ट है लेकिन राइट नहीं है, तो आगे जाके मुझे रिस्क देगा। हम क्यों कंफर्ट जोन में? क्योंकि आज व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में है, बहुत ज्यादा रिश्तों में उलझा हुआ है, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि इनसे हम दूर रहें, कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनसे बचाना चाहता है। लेकिन ये जीवन है और जीवन की यात्रा में हमें आगे तो बढ़ना है, हम इस सच्चाई को छोड़ तो नहीं सकते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जब हमें बढ़ना ही है तो फिर हम ऐसे डिसीजन क्यों लें जिन डिसीजन से मुझे भी बाद में प्रॉब्लम्स हो और मैं खुद भी उससे सेटिस्फाइड ना हो। तो इसे इजी भले ढूंढे लेकिन इजी के साथ अगर वो राइट नहीं है तो उसको ना ही करे तो बेहतर है। और इसके लिए थोड़ा सा अपने आप से लॉयल हो। ये इजी हम ढूंढ करके अपने साथ हम लॉयल्टी नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि शायद हम अपने साथ ईमानदार हैं लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, हम खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं।
0: बिल्कुल। प्रिया जी आप क्या कहेंगे?
2: मेरा मानना है कि जैसे एक बच्चा आज की डेट में बड़ा हो रहा है जिसको हम 21वीं सदी कह रहे हैं, तो वहाँ फर्स्ट डे से वो हर एक को ईजी ईजी ईजी देख रहा है कि पेरेंट्स भी वो कर रहे हैं जो ईजीली हो जाए, जैसे वो नाश्ता बनाना ही है क्योंकि माँ को भी ऑफिस जाना है, पिता को भी ऑफिस जाना
0: जी।
2: है, बच्चे को भी ऑफिस स्कूल जाना है, तो उस दौरान वो देखता है कि हर कोई जो ईजीली हो जाए उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उसके अंदर शायद एक नेचर बन जाती है आगे बढ़ते बढ़ते कि जो ईजी है वो बेस्ट है। तो यहाँ पर जब डिसीजंस पे लेने होते हैं तो वो सोचता है कि अगर वो इजीली वो हैंडल हो रहा है, डिसीजन इजी हो रहे हैं, लोग इजीली एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वो इजी गोइंग का रास्ता ढूंढता है।
0: बिल्कुल।
2: आज पैसा कमाना भी आप अगर देखते हैं तो बच्चे कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं जो इजीली अचीव किए जा रहे हैं, वो वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं बजाय जहाँ बहुत टफ है, बहुत टाइम डेडिकेशन के साथ आपको देना है, बहुत मेहनत लग रही है लेकिन अचीव होगा गोल, ये 100% है। लेकिन क्योंकि वो इजी नहीं है इसीलिए फिर वो वहाँ पे अपना फोकस ही नहीं करते या अपना डेडिकेशन वहाँ लगाना ही नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है
0: जी
2: और बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मैं समझती हूँ कि शायद ये हमारे जो एनवायरनमेंट है वहीं कहीं ये चीज़ें आ गई हैं कि जो इजी है वहीं आप करें तो बेटर है, क्योंकि जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं और जिसको रिजल्ट्स मिलते हैं दुनिया उसी को फेस कर रही है, यानी उसी को पहचान रही है, जो लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ रहा है उसको दुनिया देख ही नहीं रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, डिसीजन मेकिंग में सेल्फ ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि सेल्फ ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है।
0: जी,
1: जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया है कि हम अपने आप से लॉयल कितने हैं।
0: हाँ जी,
1: तो अपने आप पे विश्वास, अपने आप पर हमें फेथ होना अपने लिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दूसरों को कहीं ना कहीं अपने आप का सच साबित करते करते हम खुद कहीं खोते जा रहे हैं। तो जरूरत है हमें पहले खुद, जो भी हम कर रहे हैं, जिस जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हम रिलेशंस निभा रहे हैं, उसमें क्या मैं फेथफुल हूँ, मैं अपने आप के साथ सेटिस्फाइड हूँ?
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम खुद के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, हम दूसरों के लिए ट्रस्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल,
1: अगर मैंने खुद से प्यार नहीं किया है तो मैं दूसरों से प्यार नहीं कर सकती।
0: जी,
1: लेकिन आज प्यार की परिभाषा भी बदल रही है, ट्रस्ट की परिभाषा भी बदल रही है। ट्रस्ट का मतलब ही है कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से क्या जानते हैं कि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मेरा एम क्या है। तो उसको हम कहेंगे कि हमें खुद पर भी विश्वास है, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हैं, मेरा एकदम पाथ बिल्कुल क्लियर है, और अब मुझे उसमें कोई भी कहें कि अगर आएगा कोई व्यक्ति ये इंटरफेरेंस करने के लिए, तो वो हम फिर उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम राइट पाथ पे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ये चीजें आज बहुत होती जा रही है। आज व्यक्ति चार लोगों से मिलता है और उसने अगर कह दिया कि आप फेलियर है, या आप सक्सेसफुल नहीं है, या आप पे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो चार दिन के बाद हम भी उसके ऊपर ही बिलीव करना शुरू कर देते हैं, खुद के डिसीजन हम दूर कर देते हैं। तो आज की डेट में बहुत जरूरत है पहले खुद की पहचान की। सेल्फ ट्रस्ट तभी होगा जब सेल्फ की पहचान हो।
0: बिल्कुल,
1: और सेल्फ अवेयरनेस आज की डेट में हमने सिर्फ आउटर को ही समझा हुआ है, जो आउटर पर्सनालिटी हमारी दिख रही है, हम कैसे लोगों से बात करते हैं, हमारी पोजीशन क्या है, लेकिन इंटरनली हम कैसे हैं, ये बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि इंटरनल एज ए फ्रेग्रेंस का काम करता है। अगर आप इंटरनल बहुत टेंस्ड हैं और आपने फेस पे बहुत अच्छी स्माइल रखी हुई है और आप सबके साथ बहुत अच्छे से हैं, लेकिन आपके अंदर में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो जरूर उसका इफेक्ट आएगा
0: जी,
1: और दूसरे को वो टच होगा। आपने किसी के साथ बहुत अच्छा, अंदर में उसके लिए नेगेटिव फीलिंग जा रही है, लेकिन बाहर बहुत अच्छा पॉजिटिव एक व्यू बना रखा है, तो वो नेगेटिव तो वो स्मेल की तरह उस तक पहुंच ही जाएगा। वो कह भी देते हैं कई बार, हम कई लोगों को देख के कहते उसका प्यार हमें सच्चा नहीं लगा, उसकी जो उसने हमारे से ट्रीटमेंट दी हमें वो फेक था,
0: इंट्यूशंस। हाँ जी,
1: तो वो क्यों है? क्योंकि वो हमारे अंदरूनी जो हमारी इंटरनल पोजीशन है उसको वो हमें शो करता है। तो पहले हम अपने इंटरनल को बहुत क्लियर करें, क्लीन करें अपने साथ। जितने हम क्लीन एंड क्लियर होंगे, उतना ही हम दूसरों के साथ भी क्लीन एंड क्लियर होता है। और मैं समझती हूँ कि आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो अपने साथ टाइम देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम रात में भी सोते समय जहाँ हमें रिलैक्स्ड फील करना है, उस समय भी हम पूरी दुनिया की बातें, हम अकेले हो गए हैं लेकिन फिर भी अकेले नहीं है।
0: जी,
1: तो सबसे पहले अपने आप के साथ हमें टाइम बहुत जरूरी है देना, क्योंकि हम अपने साथ टाइम देंगे तभी लोग हमारी वैल्यू को समझेंगे, अदरवाइज हम लोगों की भीड़ में कहाँ खुद खो जाएंगे, हमें खुद भी पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक म्यूजिकल ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।
2: Carnival, the last ride, King.

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। क्या आज का यूथ डिसीजंस खुद ले रहा है या सोशल मीडिया फियर और वैलिडेशन उसकी लाइफ डिसाइड कर रहे हैं?
1: मेरा मानना है यहाँ सब कुछ ही मिक्स हो रहा है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन मैंने कुछ यूथ को ऐसा भी देखा है जो खुद के डिसीजंस को खुद लेना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे भी यूथ बहुत सारे हैं जो कि सोशल मीडिया कि अगर फ्रेंड सर्कल ने कोई फोटो ऐसी डाली है जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल का फील हो रहा है तो उसको लगता है मैं पीछे रह गया।
0: हाँ जी।
1: तो उस एक फोटो से वो अपना पूरा का पूरा जज कर लेता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है, मेरा सब कुछ बेकार है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को वो डाउन फील कर लेता है सिर्फ एक फोटो की वजह से। तो अगर वो डीप में जाए शायद वो फोटो भी उसने वैसे ही खिंचवाई दोस्तों ने मजे मजे में। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा मेरे माइंड को इफेक्ट कर रहा है और ये होना नहीं चाहिए। किसी ने फोटो कैसे डाली है, क्या डाली है, क्यों?

0: मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। दूसरा कारण है फियर। फियर सदा था, सदा है और रहेगा, लेकिन इसमें फर्क हमें ध्यान देना है कि ये फियर मेरा जो मेरे मन में है वो किस रीति का है
1: जी।
0: क्या मेरे पास ये डर इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है?
1: हाँ जी।
0: तो फिर ये फियर बहुत तगड़ा है और ये मुझे आगे जरूर दिक्कत देगा। लेकिन ये फियर एक ऐसी प्लानिंग की कॉन्शियसनेस भी रहती है कि जिसको हम कहते हैं कि चेतना जो है वो थोड़ी हम ज्यादा यूज कर रहे हैं।
1: हाँ जी।
0: कि लगता है कि भाई करें जैसे कैसे करें, तो ये एक प्लानिंग वाली फियर है और वो डिफरेंट होती है।
1: हाँ
0: वो एग्जैक्टली फियर नहीं होती है। तो हमें यहाँ भी फर्क देखना है कि मेरे अंदर कौन सा डर है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी के कारण डर है तो ये बहुत दिक्कत दे सकता है। और फिर अगर जैसे आपने कहा वैलिडेशन कि दूसरे मुझे बता रहे हैं कि ये सही है
1: जी,
0: और मैं उस मार्ग पे चल पड़ा हूँ जबकि मुझे उस मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि दूसरे ने कह दिया है तो मैं चल पड़ा हूँ क्योंकि मुझे उनके ऊपर भरोसा है
1: जी।
0: तो उनके भरोसे से मैं अपने रास्ते पर ज्यादा लंबा नहीं जा सकता, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता
1: जी।
0: इसलिए मुझे उसकी पूरी की पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा गाइडेंस जो है वो मुझे पहले लेनी चाहिए, तब जाके चलना चाहिए। और इसी कारण से आज का जो यूथ है वो कहीं जब पैर रख रहा है, यानी कोई भी चीज में अपना हाथ डालता है, कोई चीज ज्वाइन करता है, तो उसके बाद बहुत घबरा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: शुरू के दिन में वो बहुत इंजॉय करता है कि मेरी प्रमोशन हो गई, ये हो गई, पार्टी थ्रो करता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। और उसके कारण ये सारे हैं कि अपना डिसीजन बनाया लेकिन किसी और के कहने पर, जहां वो डर भी रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और साथ साथ में मीडिया में उसको लगता है कि मैंने तो ये फोटो डाली थी कि मैं बहुत बड़ा हूं लेकिन अब तो मुझसे नहीं हो रहा है, तो अब लोग क्या कहेंगे, तो ये सारी चीजें मुझे दिक्कत देने लगता है। तो इन सारी चीजों को अगर मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूं, मीडिया को एंजॉय करने के लिए यूज करें, उसमें अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ डालने की आपको जरूरत ही कहां है।
1: बिल्कुल सही।
0: जो मेरा मानना है उसमें आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फियर को आप अपने अंदर कंट्रोल करें एंड दूसरे के अकॉर्डिंग चलने से पहले अपने रास्ते की पूरी इंफॉर्मेशन खुद करें
1: जी। ज्योति जी आप क्या कहेंगी?
2: मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीजें जो है हमारी इंटरनल पर डिपेंड करती है। हमारे मन के अंदर बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल पावर जिसको हम कहते हैं उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो गए हैं। जैसे अजम्पशन
1: जी,
2: हमने कोई पिक्चर देखी उसमें हम अनुमान लगा लेते हैं, शायद किसी ने कोई कोटेशन डाली तो हम अनुमान लगा लेते हैं शायद ये कोटेशन मेरे लिए है
1: जी।
2: अगर हमारा उसके साथ थोड़ा सा भी कन्फ्लिक्ट हुआ है और हमने कोई ऐसी चीजें देखी हैं या कोई बहुत सैड सा डाल रहा है मैसेज, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं, अजम्पशन हमारी हो जाती है शायद वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है।
1: बिल्कुल।
2: या बहुत खुशनुमा है जीवन में, उसने वो तस्वीरें डाली हैं तो हम सोचते हैं वो तो बहुत खुश है। तो कहीं ना कहीं हम अनुमान पर जी रहे हैं और उससे हमारे डिसीजंस के ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं
1: जी।
2: अगर उसने खुशियों की तस्वीरें डाली हैं तो हमें ये वहाँ पर जरूर सोचना चाहिए कि उसने अपनी खुशी हम सबसे शेयरिंग की है
1: जी,
2: तो हमें भी खुश रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ के साथ। आज सोशल मीडिया पर हम जितनी भी चीजें देखते हैं, कई रील्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो रील्स सिर्फ उनके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो रील क्रिएट कर रहे हैं
1: जी।
2: किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और उसके कारण से उस रील्स में गए हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व, लेकिन हम उनको देख करके, हम जब उनको देख रहे हैं तो हम अपनी लाइफ के साथ उनको कंपेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने डिसीजन गलत करते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: कई बार हमारे जो डिसीजन होते हैं, दूसरी अगर हम ब्लॉकेज कहें तो हमारी एक पोजीशन बन गई है, मेंटल पोजीशनिंग हो गई है, कुछ लिमिट्स हमने अपनी बना दी है
1: जी।
2: इन सब चीजों से हमें अगर निकलना है तो हमें पहले खुद के ऊपर कुछ समय के लिए हम इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को बचाए। मैं ये नहीं कहूँगी छोड़ दें, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज की लाइफ ऐसी हो गई है कि सोशल मीडिया के बिना शायद लाइफ चल नहीं पा रही है।
1: हाँ जी।
2: तो उसके लिए हमें जरूरत क्या है कि हम थोड़ा सा उसको टाइम ना दे करके अपने साथ टाइम दें। तो हमारी जितनी भी है जो हमारे डिसीजन लेने में ये सारी चीजें इफेक्ट डाल रही है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चीजें इफेक्ट नहीं डाल रही।
1: हाँ जी।
2: बहुत रेयर लोग ही हैं जो मेडिटेट करते हैं वो इन चीजों से बचे हुए हैं, या जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, जो फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो इन चीजों से बचे हुए हैं, लेकिन

0: मोस्ट ऑफ दी जितने भी हम लोगों को देखेंगे और स्पेशली टीनेजर्स के साथ साथ हम बुजुर्गों को अगर देखें तो बुजुर्ग भी इस सोशल मीडिया से बचे हुए नहीं है
1: जी।
0: वो भी अपनी कहीं ना कहीं लाइफ इसमें ढूंढ रहे हैं और इसके लिए हमें थोड़ा सा, अगर हम सच में चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों का इफेक्ट हमारे डिसीजंस पे ना आए, तो हम सामने बैठे लोगों के साथ थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ करें और खुद के साथ अपना टाइम।
1: बिल्कुल सही बात है। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: डरिए मत, आगे बढ़िए
1: जी,
2: क्योंकि आगे बढ़ने में ही जीवन का लक्ष्य ही आगे बढ़ना होता है
1: जी।
2: ठहर जाना तो क्या कहें, एक मुर्दे की निशानी है और हमें भगवान ने जब यहाँ भेजा है तो हमारे लिए जरूर उसने कुछ तय किया है। उस पर भी विश्वास रखिए, खुद पर भी विश्वास रखिए। विवेकानंद जी ने साफ कहा है कि जो खुद पे विश्वास नहीं रखता वो इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल।
2: तो हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस ऑन सेल्फ एंड फिर

0: बिल्कुल सही बात है।
1: आज की डिस्कशन से एक बात जरूर समझ आती है, सही डिसीजंस वही होते हैं जो प्रेशर में नहीं क्लैरिटी में लिए जाते हैं। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस इनसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए।
2: ओम शांति। थैंक यू।
1: मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे थे नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। टेक केयर एंड स्टे माइंडफुल।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है?
3: तुम्बाड़ एक कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छिपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ की पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
4: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है, या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
4: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा वरना हंसता रह

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन एक बारिश भरी रात में उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूरी रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: क्या ये सब
1: क्या?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज बता जय मोनिका। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर कुछ हटके सीरीज। और जैसा कि आपको पता है, कुछ हटके सीरीज में हर बार एक नई कहानी एक नई स्टोरी के साथ में आ जाती हूँ। कुछ ऐसी कहानियाँ जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, पर उनकी आवाज उनकी कहानी आप तक नहीं पहुंची है, तो उसका जिम्मा उठाया है मोनिका ने और जुड़ गई है आपके साथ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर, जिसकी आवाज आपके दिलों तक पहुंचती है। पर अभी हाल फिलहाल में मुझे एक कमेंट आया कि जो कहानी आप लेती हैं उसमें से ऑलमोस्ट कहानियां मुझे पता होती हैं, तो वो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और इसी बात से मेरे माइंड में ना एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना मैं आपको कुछ हिंट्स बताऊं कि आज की हमारी स्टोरी किसकी है और आपको आंसर करना है कि वो महिला या वो इंसान कौन है। तो मैं सबसे पहले यही आपको खुलासा कर देती हूँ कि आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक फीमेल की है। वो कोलकाता में जन्मी 1943 में और वो एक सोशल वर्कर हैं। 2018 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और साथ ही साथ वो आज बहुत सारे लोगों को जिंदगियां दे रही हैं। तो अगर आपने हमारे इस हिंट को समझ लिया होगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए आंसर करना। बस चैलेंज का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करना है, चाहे वो गूगल हो, इंस्टा हो या यूट्यूब या फिर चैट जीपीटी। आप किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप बहुत ही ऑनेस्टी से इसका आंसर करिएगा। तो जल्दी से फोन उठाइए और डायल कर दीजिए 9654896896 और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, बट बहुत ही ऑनेस्टी के साथ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल में दम।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक चैलेंज दिया था कि आपको बताना है कि आज की हमारी जो कहानी है वो किसकी है। मैंने आपको हिंट्स दिए थे, 1943 में ये बॉर्न है कोलकाता में, 2018 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, ये एक सोशल वर्कर है। बट इतनी आश्चर्य की बात है कि मुझे कोई कॉल नहीं आया और आज मुझे पहली बार खुशी हो रही है क्योंकि मुझे दिल में तसल्ली सी हो रही है कि मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है कुछ हटके सीरीज, वो लोगों के दिलों तक उन नामों को पहुंचा पा रही है जो उन तक नहीं पहुंचे हैं। कॉल नहीं आया इट मींस आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आज किस कहानी की बात होने वाली है और इनका नाम आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। 1943 में चलिए चलते हैं, जब इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। पर पहले विवाह बहुत जल्दी हो जाया करता था, इसलिए 12 साल की उम्र में इनकी भी शादी कर दी गई। इनके पति जो हैं वो सब्जियों के विक्रेता थे, सब्जियां बेचा करते थे और हंसी खुशी से अपने परिवार को चला रहे थे। कुछ सालों के बाद इनके बच्चे भी हो गए, पर उन कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसका असर तब हुआ जब ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और इन्हें अचानक से बहुत तेज़ बुखार आया। गाँव में वैद्य हुआ करते थे उस टाइम पर, तब ये गईं दौड़कर और वैद्य को बुला करके ले आईं। घर में वैद्य आए, उन्होंने बताया कि आपके पति को बहुत तेज बुखार है, मैं इनको दवाई दे देता हूँ, अभी ये कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगे। पर इससे पहले कि ये दवाई लेते इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। तब वैद्य ने कहा कि इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, पर इन्होंने अपने पति को एक वचन दिया कि बहुत जल्द हम अभी अस्पताल चलेंगे। और ये बाहर बैलगाड़ी को ढूंढने के लिए गई कि इन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया जाए। पर जब तक ये वापस आई तब तक इनके पति का शरीर जो है बहुत ठंडा हो गया था। ये सारी चीज़ें देखकर एकदम बौखला गई सुभाषिनी मिस्त्री जी और उनके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। और बहुत टाइम के बाद जब गांव वाले उनके घर में पहुंचे तब जाकर कहीं उनके दिल की चीख निकली और उनके दिल की आवाज़ बस यही निकल रही थी कि अगर अस्पताल होता पास में तो आज आप जिंदा होते। ये चीख उनके दिल में इतनी गहराई से बस गई कि उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि आगे से किसी भी इंसान की अस्पताल ना होने की वजह से जान ना जाए। आगे अपनी लाइफ में उन्होंने क्या किया, उनके बच्चे आज क्या कर रहे हैं, आज वो कितने साल की हैं और क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ हटकी सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और आज कुछ हटके सीरीज में कहानी चल रही है कोलकाता की सुभाषिनी मिस्त्री जी की। पति की अचानक मृत्यु के बाद सुभाषिनी मिस्त्री जी की पूरी जिंदगी बदल गई। एक तरफ छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी तो दूसरी तरफ गरीबी इतनी कि दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन उसी दर्द ने उनके अंदर एक बड़ा सपना जगा दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब किसी गरीब इंसान की मौत सिर्फ इलाज न मिलने की वजह से नहीं होगी। सुभाषिनी जी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत थे। उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया, ईंट ढोई, मजदूरी की और सब्जियां तक बेची। कई बार तो हालात ऐसे खराब हो गए कि अपने बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं खिला पाती थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे अजय की पढ़ाई को सबसे बड़ा सपना बना लिया और पैसे की कमी के कारण उन्होंने अपने दो बच्चों को अनाथालय तक भेज दिया ताकि वे पढ़ सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। उनका बेटा अजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सुभाषिनी जी दिन रात मेहनत करती रही और अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा किया। बाद में अजय डॉक्टर बने और अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़े हो गए। करीब 20 साल तक एक एक पैसा बचाने के बाद सुभाषिनी जी ने पश्चिम बंगाल के हंसपुकुर गांव में जमीन खरीदी। वहां उन्होंने एक छोटे से झोपड़े में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज शुरू किया। शुरुआत में डॉक्टर बिना फीस लिए मरीजों का इलाज करते थे। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया और वही छोटा सा क्लिनिक आगे चलकर ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल बन गया। आज ये अस्पताल हजारों गरीब लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन चुका है और जिस महिला के पास कभी अपने पति का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, उसी महिला ने अपने संघर्ष और हिम्मत से गरीबों के लिए अस्पताल खड़ा कर दिया है। सच ही कहा जाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किलें भी रास्ता बन जाती हैं। आगे की कहानी में हम जरूर बढ़ेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर कुछ हटके सीरीज।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: will save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ.
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता.
0: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं. इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी. 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: कहानियां कुछ अनकही अनसुलझी सी और दीवार के उस पार की।
1: ओ लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज विद आरजे मोनिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं कुछ हटके सीरीज ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। और आज कुछ हटके सीरीज में कहानी चल रही है सुभाषिनी मिस्त्री जी की। सुभाषिनी मिस्त्री जी ने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि अपने संघर्ष को लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का जरिया बना दिया। उनका बनाया ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल आज पश्चिम बंगाल के हंसपुरक इलाके में गरीबों के लिए सेवा का सबसे बड़ा साइन बन चुका है। बाद में उन्होंने सुंदरवन क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया ताकि दूर दराज के गरीब लोगों तक इलाज पहुंच सके। उनके बेटे डॉक्टर अजय मिस्त्री आज उसी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। और जिस माँ ने कभी मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया था, आज वही बेटा लोगों की जिंदगी बचाकर अपनी माँ के सपने को आगे बढ़ा रहा है। और सुभाषिनी मिस्त्री जी के इस महान योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेव अवार्ड एंड वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जैसे कई बड़े सम्मानों से भी नवाजा गया। साल 1943 में जन्मी सुभाषिनी मिस्त्री जी आज लगभग 83 इयर्स की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सोच और सेवा का जज्बा आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। एक गरीब, अनपढ़ और संघर्षों से घिरी हुई महिला ने ये साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो वो अपनी तकदीर ही नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। तो अभी चलती हूँ मैं, मेरे जाने का वक्त हो गया है और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। और अगर आपके पास भी कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो लोगों के दिलों तक पहुँचनी चाहिए अभी तक पहुँची नहीं है, तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी अगर कोई विश या फीलिंग है जो आप हमारे साथ या लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। बाय बाय।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
2: Point six FM.

0: गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला। पोषण की पाठशाला जहाँ हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत और पोषण के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कई नई माओं के लिए ये जर्नी बेहद मुश्किल हो जाती है। कब शुरू करें ब्रेस्ट फीड देना, कैसे ब्रेस्ट फीड दे अपने बच्चे को, कितनी बार ब्रेस्ट फीड करें, ऐसे कई सवाल और डाउट अक्सर मन में आते हैं। आज के एपिसोड में हम ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हर जरूरी पहलू पर बात करेंगे, ताकि हर माँ को मिले सही गाइडेंस और कॉन्फिडेंस। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो आज हमें ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स, कॉमन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस पर अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कृति आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, आज पोषण की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो सबसे पहले ये बताइए ब्रेस्ट फीडिंग को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है माँ और बच्चे दोनों के लिए? और अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के लिए फायदेमंद है या माँ की हेल्थ पर भी इसका असर होता है?
1: थैंक यू मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर कृति, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में लगभग 3 साल से काम कर रही हूँ। हम वहाँ पे सुबह शाम ओपीडीज चलाते हैं और 24 घंटे इमरजेंसी में अवेलेबल रहते हैं, और हर तरीके की ऑब्जो गायनी की सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है। तो आज का क्वेश्चन कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इतना जरूरी है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, इवन माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके ब्रेस्ट और ओवरीज को आगे आने वाले कैंसर से भी बचाता है। प्लस ब्रेस्ट में फैट्स, प्रोटीन, सारे एंटीबॉडीज एडिक्वेट मात्रा में होते हैं जो बच्चे को चाहिए। शुरुआत में जो दूध आता है वो पतला आता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स और इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज चले जाएं, और एंड में फैट ज्यादा थिक हो जाता है, जिससे बच्चे का पेट जल्दी भरे, जो कि फॉर्मूला मिल्क में उतना बेटर प्रोपोर्शन में नहीं होता।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि आपने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, ये केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बच्चे के साथ साथ माँ को भी मिलते हैं। बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, उन्हें इन्फेक्शन से बचाना, ये सब फायदे ब्रेस्ट फीड के बाद मिलते हैं। तो जितने भी न्यू मॉम्स आज हमें सुन रही हैं, आज का एपिसोड खास आपके लिए है। इस एपिसोड से आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कुछ ही देर में। तब तक एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आज अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ हम बात कर रहे हैं आज ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, डिलीवरी के बाद पहले एक घंटे में ब्रेस्ट फीड करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है, साथ ही आज हमें ये भी बताइए कि क्लोस्ट्रम क्या होता है और कई लोग इसे वेस्ट क्यों कर देते हैं। अगर क्लोस्ट्रम न्यूबॉर्न बेबी को फीड ना कराया जाए तो कितना नुकसानदेह हो सकता है।
1: पहले घंटे में बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर आप इमीडिएटली लैच करते हो बच्चा लैच बहुत अच्छे से करता है, प्लस माँ और बच्चे की बॉन्ड बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होती है और आगे ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर रहती है एंड सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट सही रहता है, आपका सप्लाई अच्छा रहता है। जरूरी नहीं कि पहली बार में ही जब आप लैच करो तो मिल्क बहुत अच्छे से आए, स्टार्टिंग में मिल्क थोड़ा कम ही आता है, बट जैसे जैसे बच्चा सक करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और लैचिंग होता है। कोलेस्ट्रम पहले 2 से 3 दिन का मिल्क जो होता है उसे बोलते हैं, ये गाढ़ा पीला होता है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं और बहुत ज्यादा फैट एंड न्यूट्रिएंट रिच होता है। ये देखने में तो सब पीला गंदा लगता है तो इसलिए बहुत लोग इसे डिस्कार्ड करते हैं, बट ये आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, आगे आने वाले इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो इसे कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना है, बच्चे को जरूर पिलाना है, इससे बच्चे को कोई गैस कोई कब्जी कुछ नहीं होगी।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया क्लोस्ट्रम की अगर बात करें तो ये डिलीवरी के बाद पहले 2 से 3 दिन वाला मिल्क होता है जो कि एक न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे उन्हें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है क्लोस्ट्रम मिल्क की वजह से। इसलिए हमेशा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि बेबी को फीड कराना बेहद जरूरी है सो दैट कि वो आगे आने वाली बीमारियों से लड़ सके बिना किसी परेशानी के। ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े और भी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं रेडियो महारानी पर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, साथ ही सही ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन कौन सी होती है ताकि माँ को दर्द भी ना हो और बेबी को सफिशियंट मिल्क मिल सके।
1: सिजेरियन के बाद जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है स्पेशली पहले एक दो दिन, वो ये होता है कि टांकों में बहुत दर्द होता है, प्लस सिजेरियन के 24 घंटे तक माँ को बैठने की अनुमति नहीं होती क्योंकि स्पाइनल हेडेक का रिस्क रहता है। तो इसमें आपको बच्चे को लेटा के ही फीड कराना है। आप फुटबॉल पोजीशन ले सकते हैं, साइड में करवट लेके बच्चे को पकड़ के फीड करा सकते हैं। और एक दिन बाद जब आपको बैठना अलाउड है तो पिलो जरूर यूज करें, स्पेशली डोनट शेप्ड ब्रेस्ट फीडिंग पिलोज। उससे आपके स्टिचेस पे प्रेशर कम आएगा और फीड कराने में हेल्प होगी, लैचिंग अच्छी होगी तो बेबी फीड आराम से कर लेगा आपका।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आजकल काउंसलिंग भी दी जाती है तो उस काउंसलिंग की भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया फुटबॉल पोजीशन, आप उस पोजीशन में बैठकर बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर ने बताया डोनट शेप पिलो लेकर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हेल्प करेंगी। ऐसी चीजों का ख्याल रखिए, इन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में और ब्रेस्ट फीडिंग जैसी जर्नी को ईजी बनाइए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि, आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल, जो आज हमें बता रही है ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी होता है, किस तरह से ब्रेस्ट फीड कराया जाए, कितना बेनिफिट हो सकता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड करना। डॉक्टर, अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निप्पल पेन या फिर क्रैक्स की, जो अक्सर एक न्यू मदर फेस करती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए? साथ ही अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कैसे पता लगाएं कि बेबी को इनफ मिल्क मिल रहा है या बच्चा अभी भूखा है?
1: अगर क्रैक्स हो जाते हैं, जो बहुत सारी महिलाओं को होते हैं, वो ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे ने अच्छे से लैच नहीं किया है, निप्पल उसके पूरे मुंह में नहीं है, तो बाइटिंग या स्ट्रेचिंग की वजह से हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं बंद करनी। आप कोई भी क्रीम, लेनोलिन क्रीम आती है, वो लगा के ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इनफ ब्रेस्ट फीडिंग हमें ऐसे पता चलती है कि आपका बेबी 6 to 8 टाइम्स यूरिन कर रहा है अच्छे से, उसका वेट गिर नहीं रहा। आपके बच्चे का पैदा होने के बाद 10% वेट गिरता है, बट उसके बाद बढ़ना चाहिए। साथ ही बच्चे रोते नहीं है ब्रेस्ट फीड के बाद, कम से कम पेट भरा हुआ लगता है। अगर ब्रेस्ट फीड कराते ही आपका बच्चा क्रैंकी हो रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं फीडिंग अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो लेकर आई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, अब बात करते हैं कॉमन मिथ्स के बारे में। बहुत सी ऐसी मदर्स हैं जिन्हें लगता है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन कम है, क्या ये सच होता है या सिर्फ एक मिथ है? साथ ही अगर बात करें फॉर्मूला मिल्क और मदर्स मिल्क में, क्या फर्क होता है इन दोनों में? और जितनी भी वर्किंग मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं?
1: ये बहुत ज्यादा कॉमन अनसर्टेनिटी रहती है माओ में कि हमें अच्छे से दूध नहीं बन रहा, बच्चा बार बार भूखा हो रहा है। ब्रेस्ट मिल्क बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बच्चे को 1.5 से 2 घंटे में फिर से भूख लग जाती है। फॉर्मूला मिल्क हैवी होता है तो जनरली काफी देर तक बच्चे को भूख नहीं लगती, 3 घंटे तक। इसलिए हमें लगता है कि बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे अच्छे से पेट भर रहा है और ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं। बट ऐसा नहीं है, अगर आपका ब्रेस्ट हैवी रहता है एंड आप आराम से फीड करा पा रहे हैं 2 घंटे में, तो मिल्क सफिशिएंट है। प्लस जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बेबी का वेट मॉनिटर कर रहे हैं और बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली 6 से 7 महीने ऑफ बेबी आपका बच्चा 2-3 घंटे में फीड करेगा ही करेगा। बच्चे क्योंकि बाहर आते हैं तो जनरली क्रैंकी रहते हैं, बहुत टाइम ये होता है कि बच्चा बार बार रो रहा है तो हमें लग रहा है पेट नहीं भर रहा, भले मिल्क प्रोडक्शन पूरा है। तो बच्चे के रोने पे हमेशा ना जाएं, आप खुद देखिए कि क्या आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, वेट, डायपर चेंज, इन सब पे ध्यान दीजिए। फॉर्मूला मिल्क और मदर मिल्क में ये अंतर है, फॉर्मूला मिल्क में सिर्फ न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको, मदर मिल्क में लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी आपको टीके लगे हैं या जो भी आज तक आपको इन्फेक्शन हुए हैं उसकी एंटीबॉडीज हैं आपके पास, जो माँ के दूध से बच्चे में जाती है और उस इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करती है। फॉर्मूला मिल्क में आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती, तो ब्रेस्ट मिल्क इज ऑलवेज बेटर देन फॉर्मूला मिल्क। अब वर्किंग मदर्स, आजकल हम सब काम करते हैं तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो मिक्स कर सकते हैं आप। यू कैन डू सम ब्रेस्ट फीडिंग एंड सम फॉर्मूला मिल्क जिससे इम्यूनिटी भी जाए, फिर या तो आप पंप करके रख सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क को बहुत स्पेसिफिक तरीके से प्रिजर्व किया जाता है एंड हीट भी आप काउ के दूध की तरह उसे नहीं कर सकते। डायरेक्ट हीट ब्रेस्ट मिल्क को अगर हम करते हैं तो लाइव ऑर्गेनिज्म उसके मर जाते हैं, तो आपको हमेशा पानी गर्म करना है और उसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क को गर्म करना है इनडायरेक्ट हीट से। तो आप प्रिजर्व कर लीजिए अपना ब्रेस्ट मिल्क, आप मिक्स फीडिंग दे दीजिए। अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ ऑफ अ वर्किंग मॉम इज बेटर।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर ने बताया ब्रेस्ट मिल्क इज बेटर देन फॉर्मूला मिल्क। अगर सिर्फ फॉर्मूला मिल्क की बात की जाए तो कहा गया है कि यहाँ पर बेबी को न्यूट्रिशन उतने नहीं मिलते जितने रिक्वायर्ड होते हैं। एंड जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि मदर मिल्क में लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके बच्चे को इम्यूनिटी देते हैं, आपके बच्चे को स्ट्रांग रखते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। जितने भी टीके, जितनी भी वैक्सीन एक मदर को लगती है वो सब मिलती है एक मदर मिल्क में बच्चे को। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ज्यादा कराएं, फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंड ना रहे। और जितनी भी वर्किंग मदर है उन्हें गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने ये भी बताया है आज कि आप किस तरह से अपना ब्रेस्ट फीड प्रिजर्व करके रख सकते हैं सो दैट कि आपका बेबी जब भी भूखा हो उस मिल्क को कंज्यूम कर सके। इसी के साथ और भी सारे मिथ हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार सुरेख के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें मदर्स न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल की, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को अपनी डाइट में किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए? अगर एक न्यू मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो क्या इसका असर मिल्क सप्लाई में पड़ता है?
1: माँ का न्यूट्रिशन डायरेक्टली लिंक्ड होता है मिल्क प्रोडक्शन से, तो माँ का न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे घरों में ये होता है कि पहले 6 दिन माँ को कुछ नहीं दिया जाता, कम बस दाल का पानी, लाइट, जिससे बच्चे को दिक्कत ना हो, उससे मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। माँ को प्रॉपर कैल्शियम आयरन रिच खाना खाना जरूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम देना है बच्चे को तो माँ का इंटेक बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूर दें, प्रोटीन रिच होना चाहिए। अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे, दूध, पनीर, ये मिथ है कि दूध टांके खराब करता है, दूध जरूरी है। हरी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, फल सब दीजिए। मेंटल स्ट्रेस, नींद कम होना, सब मिल्क प्रोडक्शन इफेक्ट करता है। अगर आप रात को सोते नहीं हैं, आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम बनता है, जिससे दूध कम बनता है, तो मेंटल पीस ऑफ अ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन की, डॉक्टर अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इनक्रोचमेंट, ब्लॉक डक या फिर मैस्टाइटिस जैसे इश्यूज में, साथ ही अगर बेबी लैच नहीं कर रहा हो तो मदर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस स्टेज पर आकर एक लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलना बेहद जरूरी हो जाता है।
1: अगर आपकी ब्रेस्ट में सूजन आ रही है, डक्ट बंद हो गई है, दर्द हो रहा है, लाल हो रहा है, तो तुरंत सिकाई करें, पहले गर्म फिर ठंडे की, उससे डक्ट्स खुलेंगी, और फिर ब्रेस्ट फीड कराएं। जिस ब्रेस्ट में सूजन है उससे ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि वो सूजन दूध के इकट्ठे होने से हो रही है। अगर उसे आप खाली कर दोगे तो सूजन ठीक हो जाएगी। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे, ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे, तो उसमें थोड़े टाइम में पस बन जाएगा और चीरा लगाने की भी जरूरत पड़ जाती है। सूजन में बहुत लोगों को लगता है कि हमें वहाँ से दूध नहीं पिलाना और दूध फेंक देना, ऐसा कुछ नहीं है, दूध ठीक है, जरूर पिलाएं उसमें से दूध और उसे खाली करें। अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा तो आप उसे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखिए। जब बच्चे की चमड़ी और आपकी चमड़ी मिलती है तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है आप में और बच्चे में, और उसकी लैचिंग कैपेसिटी बेटर होती है। ध्यान दीजिए कि लैच अच्छे से कर रहा है या बच्चा या नहीं, अगर अच्छे से करेगा तो हो सकता है फिर आपको हेल्प हो। अब किस स्टेज पे आपको लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलना है, वो तब है अगर पस निकलने लग जाए आपके ब्रेस्ट से, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जो सिकाई के बाद भी कम नहीं हो रहा, बच्चे ने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और आपको बुखार आना शुरू हो गया है। इस केस में जरूर डॉक्टर को दिखाएं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग आखिर होती क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है और मदर और बेबी को इससे क्या फायदे मिलते हैं, साथ ही डॉक्टर ने ये भी बताया किस तरह की मिथ हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, और डॉक्टर ने टिप्स भी दिए हैं कि किन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के दौरान। अगर हम बात करें लैक्टेशन एक्सपर्ट से मिलने की, तो डॉक्टर ने बताया कि जब भी आपको ये लगे कि आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, आपका बेबी लैच नहीं कर रहा है, आपको पेन फील हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो अगर इस तरह के डाउट आपके मन में आ रहे हैं तो प्लीज जाकर एक लैक्टेशन एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। इवन आप अपनी गायनी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको सही गाइडेंस देंगे, बस उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए एंड फिर देखिएगा कि ये जर्नी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में आपको पेशेंस से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है, और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। बाकी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए खास ट्रैक जो है आपके लिए।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की, तो पहले ये बताइए कि क्या मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, एंड साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक होनी चाहिए, और अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की तो कब से स्टार्ट करनी चाहिए, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग बंद करते वक्त विनिंग क्या गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए।
1: एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीने होती है, इसका मतलब है आप कोई पानी हनी कुछ भी नहीं देते। इंडियंस बहुत ज्यादा घुट्टी में बिलीव करते हैं या शहद चटाने में बिलीव करते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है। बच्चे में कोई इम्यूनिटी नहीं होती, वो पेट के अंदर था, उसको किसी भी एंटीजन का एक्सपोजर नहीं है। आप कुछ भी देंगे जो बाहर का है, उससे इन्फेक्शन रिएक्शन होने के बहुत चांस होते हैं। हनी में तो बल्कि एक बॉटुलिज्म टॉक्सिन होता है जो डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ब्रेस्ट फीड के अलावा 6 महीने तक आपको पानी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा इवन फॉर्मूला मिल्क में पानी मिलाया जाता है जो कि उबला हुआ होता है, और ब्रेस्ट फीड मिल्क जो होता है स्टार्टिंग का उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होता है। तो कुछ नहीं देना पहले 6 महीने तक, उसके बाद आप धीरे धीरे सेमी सॉलिड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना की प्यूरी, चावल का पानी थिक करके, दाल बिल्कुल पतली करके सूप की तरह, ये सब धीरे धीरे ऐड करिए। इसे हम वीनिंग बोलते हैं जो 6 महीने के बाद शुरू होती है, और अगर पॉसिबल है तो वीनिंग के साथ साथ 2 साल तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, इन बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार सुरक्षा के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहां आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। डॉक्टर, अगर बात की जाए ब्रेस्ट फीडिंग की, तो ये बताइए कि ब्रेस्ट फीडिंग का माँ के मेंटल हेल्थ और बॉन्डिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? साथ ही अगर एक न्यू मॉम ये गिल्ट फील करे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप?
1: हम ब्रेस्ट फीडिंग को एक माँ बनने के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। जब माँ अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे कौन से माँ हो जो दूध नहीं पिला पा रही, या फिर तुम अपने बच्चे को प्यार नहीं करती इसलिए दूध नहीं आ रहा। बट ये सच नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से होता है, बहुत बार दूध नहीं बनता। तो हमें उन माओं को शेम करने से बेटर है सपोर्ट करिए। वो माँ भी उतने ही मन से ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है जितना आप चाहते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फेड बेबी जरूरी नहीं है, फेड बेबी जरूरी है। नहीं आ रहा तो कोई नहीं, आजकल की साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऑलमोस्ट सेम हम कंपोजिशन में दूध दे सकते हैं। पर एक चीज जो ध्यान रखनी है, गाय के दूध पे नहीं जाना है, आपको पाउडर फॉर्मूला मिल्क ही देना है। गाय के दूध में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है जो इनिशियल ईयर्स में आपके बच्चे को चाहिए, तो फॉर्मूला मिल्क दीजिए। प्लस गाय का दूध एलर्जी वगैरह भी स्टार्टिंग में कर सकता है, तो वो आप एक साल बाद शुरू कर सकते हैं। तो हमेशा मदर्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि हैप्पी मदर ही हैप्पी बेबी को लीड करेगी। थैंक यू
0: सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। एंड दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल और रीअश्योरिंग रहा होगा। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे का पहला पोषण नहीं, बल्कि माँ और बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता भी बनाता है। और आज हमने जाना कि सही टेक्निक, पेशेंस और गाइडेंस के साथ ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को आसान बनाया जा सकता है। और आज इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रही डॉक्टर कृति फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपने वैल्यूएबल गाइडेंस एंड सिंपल टिप्स हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और ढेर सारी टिप्स के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: 89.6 FM
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: एक स्कूल सिर्फ बिल्डिंग से नहीं चलता, उसकी पहचान बनती है वहाँ की वैल्यूज, डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा उस इंसान से जो पूरे स्कूल को लीड करता है। क्योंकि एक प्रिंसिपल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालता बल्कि बच्चों की सोच, टीचर्स की एनर्जी और पूरे स्कूल कल्चर को शेप करता है। तो आज मेरे साथ हमारे खास मुलाकात में जुड़ रही है मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर शिवानी साहनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू सो मच गीत
0: जी। तो मैम, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी, कैसी रही आपकी ओवरऑल जर्नी?
1: सो गीत, मैं ये बताना चाहूंगी अपने लिसनर्स को कि मेरी जर्नी शुरू से स्कूल के साथ नहीं रही।
0: ओके।
1: तो मैंने जो अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करा वो फार्मास्यूटिकल्स में सेल्स एंड मार्केटिंग से स्टार्ट करा
0: जी,
1: और 1997 से लेके 2004 तक मैं फार्मा में रही। कुछ चंद साल फिर अपने बच्चों को दिए, फैमिली को दिए
0: जी,
1: और 2008 में एक प्रोग्राम कर रही थी लैंडमार्क करिकुलम फॉर लिविंग।
0: ओके।
1: और उस प्रोग्राम को करने के समय जब मैं उसके फोरम को करके एडवांस कोर्स में गई तो समझ आया कि मैं कुछ और बड़े काम के लिए हूँ। करियर के बारे में सब लोग सोचते हैं और बनाते भी हैं, काम करते हैं उस पर मेरी कॉलिंग मुझे वहां पर पता लगी कि सोसाइटी को कुछ वापस देना है, गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो सोसाइटी ने ही शेप किया था, एजुकेटर्स ने शेप किया था, जहां मैं बिल्कुल एजुकेशन में आने का कभी सोचती भी नहीं थी
0: जी,
1: वहां वो कॉलिंग आई और लगा कि अब एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं और वहां पर एक वो स्पेस क्रिएट करते हैं जहां हम बच्चों को वो स्किल्स दे सकें
0: जी।
1: क्योंकि ये 2008 की बात है, तो 2008 में तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं था और बहुत सारे स्कूल्स ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में ज्यादा सुना नहीं था इंडिया में। CBSE जनरली एक रोट मेमोराइजेशन के फॉर्म में देखा जाता था, टीचर्स पढ़ाते थे, बच्चे रटते थे और फिर एक एग्जाम दे देते थे, तो मार्क्स के बेसिस पे ही सब कुछ डिसाइड होता था। लेकिन जिस प्रोफेशनल कल्चर से मैं आई थी वहाँ पर मार्क्स मायने नहीं रखते थे, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी, जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था केमिस्ट्री ऑनर्स का, बैचलर्स का, उसी दिन मैं शाम को अपना इंटरव्यू देने के लिए गई फाइजर में।
0: ओके।
1: तो जहाँ मेरे फ्रेंड्स एंजॉय करने गए, लंच करने गए, मैं इंटरव्यू के लिए गई। और ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था लास्ट, तो अभी मार्कशीट्स का तो सवाल ही नहीं था। तो वो इंटरव्यू के दौरान मैंने कैसे बात करी, मैंने क्या क्या किया अपनी एजुकेशन के टाइम पर, वो सब चीजें ज्यादा मायने रख रही थी
0: जी।
1: मार्क्स में नहीं कोई भी ज्यादा काम किया, हाँ उससे पहले के स्कूल के मार्क्स तो सर्टेनली थे ही। मैं ये नहीं कहूंगी कि मार्क्स की वैल्यू नहीं है, मार्क्स की वैल्यू सर्टेनली है, लेकिन मार्क्स से अलावा बहुत सारी चीजें आपको शेप करती हैं
0: जी,
1: जो कि है एक वैल्यू सिस्टम। सो उसका क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे वो वैल्यू सिस्टम दिया
0: जी।
1: इंटेग्रिटी और एथिक्स के बारे में मैं अगर कहूँ तो वो मुझे वहां से मिले। मेरे एजुकेटर्स के बारे में कहूंगी कि वो एजुकेटर्स जो पैशनेटली हर वक्त काम करते थे, 8 के 8 पीरियड्स पढ़ाते थे क्लास में, कोई सब्स्टिट्यूट पीरियड भी उनको मिल जाता था तो बड़ी खुशी खुशी लेते थे
0: जी,
1: वो आज पैशनेट एजुकेटर्स तक कम दिखते हैं, पर वो सबने मेरे व्यक्तित्व को बनाने में बहुत हेल्प किया। और बस वही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ मैंने एजुकेशन में ज्वाइन किया दिसंबर 2008 में, और बस वहां से मैं वापस मुड़ी नहीं।

0: yes, yes. Say it again.
1: Yeah. इस पूरी जर्नी में कौन एक ऐसा पर्सन रहा जिसने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया? एक कोई नाम अगर लेना चाहे,
2: एक कोई नाम ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक नाम लूंगी ना तो वो बाकी सब की तरफ जस्टिफाइड नहीं होगा, तो कुछ चंद नाम तो लेने बिल्कुल बनते ही हैं।
1: जी,
2: मेरी जर्नी में अगर मैं कहूँ पेशेंस, तो वो मैंने मेरी मम्मी से सीखा। अगर मैं कहूँ परसिवरेंस और कम्युनिकेशन, तो वो मैंने मेरे हस्बैंड से सीखा।
1: ओके,
2: अगर मैं कहूँ पैशन, तो वो टीचर और मेरी बायो टीचर से सीखा।
1: जी
2: ठीक है। अगर मैं कहूँ कि चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, तो चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच मैंने मेरी ज्योग्राफी टीचर से सीखा।
1: ओके
2: ठीक है। व्हेन आई लुक बैक, तो ये सब चेहरे मेरे सामने आते हैं। परफेक्शन और लगे रहना, अंत तक छोड़ना नहीं, वो मैंने मेरी इंग्लिश टीचर से सीखा।
1: जी,
2: जो मुझे 9th-10th में इंग्लिश पढ़ाते थे। तो इसलिए मैं अगर एक इंसान का नाम लूंगी तो वो अनजस्ट है ना इन सब के
1: लिए। Exactly.
2: तो रेखा सूरी मेरी मदर,
1: जी
2: मनीष साहनी मेरे हस्बैंड, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आई एम श्योर वो प्राउड है जिस तरह से मैं आगे पहुंची और मेरे बच्चों को मैंने आगे उनकी वैल्यूज के साथ पहुंचाया।
1: जी,
2: घोष मैम मेरी ज्योग्राफी टीचर, सेबा मैम मेरी मैथ्स टीचर, कमलेश्वरी चावला मैम मेरी बायो टीचर, एंड रीटा सबरवाल मैम मेरी इंग्लिश टीचर।
1: जी,
2: एंड मेरे कुछ मेंटर्स जो फाइजर में जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा।
1: जी,
2: है ना, और मुझे एक प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री दी। तो चावला सर, अरुण नैयर सर मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहे, और सुबू जिसने मुझे इंडक्ट किया, मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स वगैरह दी।
1: जी,
2: तो ये चंद नाम है, ऐसे तो नाम बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये वो नाम है जिनको मैं जरूर कहना चाहूंगी, मेंशन करना चाहूंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी फैमिली, जिसमें मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी ब्रदर, उन सब ने मेरा बहुत साथ निभाया। इन ऑल द थिक्स एंड थिन्स दे वर स्टैंडिंग देयर।
1: जी,
2: मेरे फादर जो बड़ी यू नो साइलेंटली सपोर्ट करते हैं है ना, तो वो साइलेंट सपोर्टर्स भी आपकी लाइफ में बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो बचपन में मुझे लगता था कि अरे पापा तो प्यार दिखाते नहीं है ना, बहुत सारे पापा लोग नहीं दिखाते हैं, वो प्यार मैंने मेरे बच्चों की तरह देखा है ना, तो वो बहुत अमेजिंग है। और मेरे बच्चे यशस और हितेच्छा,
1: जी,
2: क्योंकि जिस समय उनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पापा के ना होने पे एक सिंगल पेरेंट की और ज़्यादा ज़रूरत पेरेंट बच्चों को पड़ती है, उस समय में मैं अपने स्कूल के बच्चों के साथ थी। तो मेरे स्कूल में जो मेरे एरिया में जैसे ग्रेड 4 और 5 का मैं एकेडमिक हेड थी, तो जो 500-600 बच्चे मेरे विंग के थे, मैं उनके पास थी।
1: ओके,
2: तो मेरे बच्चे डिमांडिंग नहीं थे।
1: ओके, समझा उन्होंने?
2: हाँ, बहुत समझा। अगर वो डिमांडिंग होते तो मेरा वक्त भी मांगते, मुझसे पैसे भी मांगते, बहुत ब्रांडेड चीजें जैसे आजकल के बच्चे मांगते हैं, सब चाहते करते हैं ना, तो वो नहीं किया उन्होंने। उन्होंने समझा, तो वो मेरे साथ पिलर की तरह खड़े रहे। क्योंकि अगर वो नहीं खड़े होते और वो ये नहीं समझते, तो मैं थोड़ी ना इतने सारे बच्चों के साथ में आज उनको वो दे पाती जो मैं दे पा रही हूँ।
1: बिल्कुल।
2: तो मैं कहूंगी कि उन दोनों का सैक्रिफाइस एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, और मैं ताजिंदगी ताउम्र उसको भूल नहीं सकती हूँ, और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि वो उन वैल्यूज के साथ बड़े हुए जो वैल्यूज की कल्पना मैं करती थी।
1: जी,
2: और आई एम सुपर ब्लेस्ड।

0: एक और सवाल है मेरा, ये सवाल है कि एक स्कूल को चलाना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन है या फैमिली जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
1: ये ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स प्रिंसिपल स्कूल को एडमिनिस्ट्रेटिव समझते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रिंसिपल्स उसको एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं भी समझते हैं। और मेरा ये मानना है कि इट इज़ वे बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। एक इमोशनल कल्चर सेट करना
0: जी
1: बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्रिंसिपल के लिए, एक लीडर के लिए, क्योंकि राइट कल्चर के होने से ही बच्चे फ्लरिश कर पाएंगे और टीचर्स फ्लरिश कर पाएंगे। जहाँ पर एक कल्चर होगा नॉन जजमेंटल होने का, यू नो, बिकॉज आज बच्चों के अंदर फियर क्यों है? आप अगर देखो, जब बच्चा पैदा होता है तब किस चीज़ का फियर होता है उसको? जब वो बड़ा होता है, एक्सपेरिमेंट करता है, चलने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, अगर वो डरता तो वो खड़े होने की कोशिश नहीं करता ना।
0: बिल्कुल,
1: वो गिरता भी है लेकिन वो फिर भी खड़ा होता है ना। जब वो चलना शुरू करता है कितनी बार गिरता है, मगर उतनी बार गिरने के बाद भी वो हर बार खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो डर उसके उसका हिस्सा नहीं है। ये डर कौन डालता है? डर तो हम डालते हैं। वी एडल्ट्स एक्चुअली मेक देम फियरफुल बिकॉज वी गिव देम डायरेक्शंस। हम उनको डायरेक्ट, बेटा ये नहीं करो, बेटा ऐसे नहीं करो, हम उसको। और आजकल तो खासकर हर फैमिली में एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। सो वो पोजेसिवनेस भी है और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ अपने बच्चे को दे दें, एक साथ ही दे दें। तो उस सब में हम बच्चों को बहुत फियरफुल बना देते हैं
0: जी,
1: उनको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं देते, कोई चीज़ को तोड़ने ही नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ को जोड़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तो वो जो एनवायरनमेंट हमें बच्चों को देना है ना, वो स्कूल में हम दे सकते हैं। स्कूल में वो अपने पीयर्स के साथ, अपने और दोस्तों के साथ वो लर्निंग कर सकता है। तो सबसे पहले तो वो कल्चर टीचर्स में होना चाहिए कि एक फ्री एक्सप्रेशन का आप माहौल क्रिएट करें
0: जी।
1: बट हाँ, वो फ्री एक्सप्रेशन के साथ साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी है, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि फ्री एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसमें एक छोटा सा डिसिप्लिन होना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे को जब वो डर नहीं होता है कि मैं जज होऊंगा, क्लास में भी तो बच्चे कितनी बारी सवाल नहीं पूछते ना टीचर से, या जवाब नहीं देते ना,
0: बिल्कुल,
1: अरे गलत हुआ तो सब हंसेंगे मेरे को,
0: बिल्कुल।
1: तो वो एलिमेंट जब हम एज लीडर्स निकाल पाए, यानी जब मैं खुद वो चीज अपने टीचर्स के साथ कर रही हूँ, वो मेरे व्यवहार में है, अगर कि हाँ ओके प्लीज कम, माय डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, इफ यू डोंट लाइक एनी डिसीजन ऑफ माइन लेट्स डिस्कस ओवर इट। अगर आपके पास लॉजिक है तो आप मुझे कन्विंस कर दोगे, अगर मेरे पास लॉजिक है तो मैं आपको कन्विंस कर दूंगी। बट एक कॉन्वर्सेशन होना इम्पोर्टेंट है,
0: बिल्कुल,
1: वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देता, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये एक प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एक इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे, तभी वो फियरलेस कल्चर क्रिएट होगा
0: जी,
1: नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट होगा, सेफ्टी से ही सब चीजें आगे बढ़ती हैं।

0: अच्छा, आपको क्या लगता है एक प्रिंसिपल का बिहेवियर पूरे स्कूल को अफेक्ट करता है डायरेक्टली?
1: सर्टेनली करता है. देखिए, ये तो एक टॉप डाउन अप्रोच है. जो ऊपर बैठा हुआ इंसान, जिस जो उसका व्यवहार है ना, उसको देख देख के ही नीचे वाले लोग सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे. और बच्चों की अब अगर बात करें तो बच्चे ना इंस्ट्रक्शंस तो भूल जाएंगे. दे विल नॉट फॉरगेट व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग, व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग. तो इट इज अबाउट एक्सपीरियंस. अगर हम वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके, वो एक्सपीरियंस हमारा, अगर स्कूल में कोई विजिटर आता है ना, तो अगर वो कल्चर है वैसा, तो वो विजिटर भी एक्सपीरियंस कर लेगा. उसको भी पता चलेगा. तो इसलिए एक प्रिंसिपल के बिहेवियर पे तो सब कुछ अलाइंड है. अगर एक प्रिंसिपल एम्पथेटिक है तो उसको ऑब्जर्व करने वाला सारा स्टाफ है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो ग्रेड फोर एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो सूनर और लेटर पीपल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट, राइट? यू डोंट हैव टू बी बॉसी
0: जी,
1: क्योंकि आप बोल के नहीं करा सकते. रिगार्ड तो आपके बिहेवियर से ही आपको मिलेगा ना. रिस्पेक्ट तो आपके बिहेवियर से ही आपको मिलेगा. क्योंकि अगर वो रिगार्ड और रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ चेयर मिल रहा है तो वो शॉर्ट लिव्ड है
0: जी,
1: दैट इज नॉट लॉन्ग.
0: बट ऐसा नहीं होता कि जब कई बार आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ अपने आप को दिखाते हैं तो लाइक कोई बहुत फॉर ग्रांटेड ऐसा भी होता है कभी,
1: तो वो एक बड़ी बैलेंसिंग सिचुएशन
0: होती है. उसको कैसे बैलेंस
1: होता है? बिल्कुल होता है. जब आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो जाते हो तो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड. बट अगेन, वहीं पर ही एक थिन लाइन है जिसको आपको क्रॉस नहीं होने देना है उनको. तो काइंडनेस के साथ में डिसिप्लिन बड़ा इम्पोर्टेंट है.
0: ओके,
1: है ना? तो एक बाउंड्रीज को सेट करना इम्पोर्टेंट है कि यू नो दिस इज व्हाट यू कैन नॉट क्रॉस. तो अगर हमने टाइमलाइंस बनाई हैं तो वो टाइमलाइंस करनी है. ओके, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड टॉक अबाउट इट. सो व्हाट आई डू, मेरी प्रैक्टिस हमेशा ये होती है दैट आई टेल देम, ओके, इफ यू स्ट्रगलिंग विद समथिंग, सपोज एक टाइमलाइन है और वो टाइमलाइन अचीव करनी है आपने, आज है 20th, आज मैं आपको टास्क दे रही हूँ और 22nd तक आपने अचीव करनी है, राइट?
0: ओके.
1: अब 22nd को जब मैं आपसे उस काम के बारे में मांगू, पूछूं, तो उस समय नहीं रीजन आना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं. क्योंकि आप काम 22nd को थोड़ी ना उस समय करने लगोगे. आपके पास 2 दिन का विंडो है, तो आप वो 2 दिन के विंडो को यूटिलाइज करोगे, राइट? तो अगर आपको 21st को ये लगने लग रहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता किसी वजह से, तो आप मुझे वहीं अप्रोच करो.
0: बिल्कुल,
1: ठीक है. तो वहां अप्रोच करने से क्या होगा कि मैं ये डिसाइड कर पाऊंगी कि मुझे ये काम 22 को ही चाहिए या मेरे पास विंडो है कि मैं उसको 23 को ले सकती हूँ. तो इफ आई हैव दैट विंडो, आई विल टेल ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, 23rd को सबमिट कर देना. बट अगर मेरे पास विंडो नहीं है तो आई विल अटैच 1 more person और 2 more people wherever, whatever, from the system, जिससे बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं हो, सो दैट एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए उनको और वो काम 22 को ही कंप्लीट हो जाए. तो वो कल्चर से होता है. अगर ओपननेस आपने रखी हुई है तो फिर वो ग्रांटेड नहीं लेंगे. फिर देन दे नो कि ओके, इफ आई एम स्ट्रगलिंग, यू नो, माय लीडर विल लिसन टू मी एम्पैथेटिकली, माय लीडर विल अंडरस्टैंड माय सिचुएशन एंड माय लीडर विल सपोर्ट मी.
0: जी,
1: सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग काइंडनेस के साथ साथ डिसिप्लिन होना बड़ा इम्पोर्टेंट.
0: जी, डिसिप्लिन.

0: आज के वक्त में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत चाहिए। इसको कैसे आप बैलेंस आउट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं?
1: आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, ये मैं कहूँगी 100% करेक्ट है कि आज के टाइम पे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं चाहिए, बिकॉज अकेडमिक्स जो है ना वो तो बहुत रेडिली अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू नो हर तरह से अवेलेबल है। बच्चों को इमोशनल स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वो बड़े ओवरवेलम्ड हैं। किस चीज़ से ओवरवेलम्ड हैं? इतनी फास्ट पेस पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे, ये जो डिजिटल नॉइस है ना, ये भी एक ओवरवेलमिंग सोर्स है, एंड टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अब वो बच्चों से एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की भी हैं, टीचर्स की भी हैं, उनकी खुद की अपनी भी हैं
0: जी।
1: कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन कंपैरिजन से भी आता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं, उनकी वजह से बच्चे बहुत ओवरवेलम्ड हैं और इसीलिए बहुत जल्दी इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं
0: जी।
1: तो जैसे मैंने बोला कि एक स्पेस जहाँ बच्चे फियरफुल ना हों
0: जी,
1: फ्री एक्सप्रेशन कर सकते हों, वो स्पेस होना, वो कल्चर स्कूल में होना इम्पोर्टेंट है। तो जो स्कूल में जितने भी एडल्ट्स हैं, वो एडल्ट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को सुनने के लिए सुने।
0: ओके,
1: यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी लिसन ओनली फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग, सो वी हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड
0: विदाउट एनी जजमेंट
1: विदाउट एनी बायस। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले कोई काम की वजह से हम एक धारणा बना लेते हैं, इमोशन बन जाती है कि ये तो ऐसा ही है, इससे तो यही उम्मीद हो सकती है
0: जी,
1: है ना। तो वो उस बायस के साथ कभी नहीं चलना चाहिए, बिकॉज वक्त और हालात के साथ साथ इंसान काम करता है और कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जो बदल नहीं सकता है। अगर उसको राइट एटमॉस्फेयर मिलता है, राइट तरह से समझने सपोर्ट करने वाला कोई इंसान मिलता है, तो उसमें बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। और मेरे अपने स्कूल्स में मैंने देखा है, जहाँ पर भी काम किया है, एक मेरा स्टूडेंट रहा है जो बहुत शरारती, ठीक है, और बच्चे नहीं शरारत करेंगे तो कौन करेगा
0: जी जी।
1: बट एज लॉन्ग एज मैं उनको बोलती हूँ कि जो शरारते हैं आपको या किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो शरारतें ठीक है आप करो, है ना
0: जी,
1: क्योंकि बचपन ही है शरारतों के लिए। लेकिन उसकी कई शरारतें ऐसी रही जिसमें किसी ना किसी को तकलीफ हुई, तो वो सिचुएशन भी रही उस बच्चे के साथ जहाँ सस्पेंशन भी करना पड़ा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बिकॉज आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो
0: जी
1: बाकी लोगों के लिए, अदरवाइज तो फिर सभी ये सब कुछ करने लगेंगे, है ना। और अब वही समय है जब उसके बाद, क्योंकि वो तो एक रेप्रिमंड हुआ, बट उसके बाद जब काउंसलिंग हुआ और जब वो उसको स्पेस मिलना शुरू हुआ, जब सब लोगों को ये समझाया गया, सारी टीचर्स की टीम को समझाया गया कि अब ये हो गया, अब इसके बाद हमें कैसे ऑपरेट करना है और बच्चे को कैसे सपोर्ट करना है, और पेरेंट के साथ भी बैठ के बात हुई और बोला कि ये कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है आपकी और हमारी, ना स्कूल अकेले कुछ कर सकेगा और ना आप अकेले कुछ कर सकेंगे, तो वो एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा
0: जी।
1: और वो सब करते करते में आज वही बच्चा स्पोर्ट्स कैप्टन है।
0: अमेजिंग।
1: और ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम की बात नहीं है, ये सिर्फ एक साल की बात है।
0: क्या बात है।
1: तो देखिए, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, अगर एक साल में वो बच्चा आज स्टेज पे खड़ा हो सकता है तो क्यों नहीं कुछ भी बदला जा सकता। सब कुछ मुमकिन है, वो कहते हैं ना, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल।
0: एग्जैक्टली।
1: सो हमें हर एक समस्या में, क्योंकि मेरा मानना है नो प्रॉब्लम कम्स विदाउट अ सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन के साथ आती है, हमें देखना आना चाहिए
0: जी।

0: एक और सवाल है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन हम लोग बदल रहे हैं, मिलेनियल्स, जेन ज़ी, देन अल्फा, तो आप जो है एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, आप लोग अपने ऊपर किस तरीके से वर्क करते हैं ताकि आप उनके इमोशंस को समझ पाएं, उनके उनके स्लैंग्स को, उनके बिहेवियर को समझ पाएं, तो आप किन चीजों पे काम करते हैं? बिकॉज हम हर दिन सीख ही रहे हैं.
1: बिल्कुल सीख रहे हैं. कई बार बड़ी परेशानी होती है, वो कोई ऐसी चीज बोलते हैं जो हमने सुनी नहीं होती. और अभी तक तो ऐसा था कि मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहते थे तो मुझे दिक्कत ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि उनकी बातों से पता चलता रहता था तो मैं अपडेटेड रहती थी.
0: हाँ जी.
1: अब वो दोनों बाहर पढ़ने चले गए हैं तो अब बड़ी समस्या होती है, गूगल करना पड़ता है.
0: हाँ जी.
1: तो थैंकफुली गूगल है तो इसलिए हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं. लेकिन वाकई में
0: जी
1: बहुत बार ऐसा होता है जो हमें नहीं पता होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जब मुझे पहली बार वेप के बारे में पता लगा तो आई वॉज अनअवेयर.
0: ओके.
1: वेप क्या होता है? मतलब कुछ 3-4 साल पहले की बात है. तो एक टीचर ने रिपोर्ट करा, मैम एक बच्चे के पास वेप है. ऑब्वियसली आप वो टीचर के सामने शो नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है
0: जी
1: वेप क्या होता है ना. तो आपको बड़ा आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से रखनी होती है, कॉन्फिडेंटली. हाँ अच्छा ठीक है ओके, लेट्स एड्रेस दैट टुगेदर, गो ब्रिंग इट.
0: ओके.
1: Now by the time the person will bring it, हम Google को करी लेंगे.
0: हाँ जी.
1: तो ये बड़ा important है कि बच्चों के साथ connected रहना. तो मैं क्या करती हूँ, class observations हैं और मैं generally एक class तो पढ़ाती हूँ.
0: Okay.
1: है ना, मेरा passion है life skills. तो मैं life skills की एक class लेती हूँ.
0: Okay.
1: अभी हाल फिलहाल मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ मैं ज़्यादा लाइफ स्किल्स की क्लासेस नहीं ले पाई, लेकिन इससे पहले मैं जिस स्कूल में थी मैंने हमेशा हर दिन में एक पीरियड अपने लिए लाइफ स्किल्स का रखा
0: जी.
1: तो मैं ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 10th के बच्चों को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी बहुत रैपिडली होते हैं और बहुत क्यूरोसिटी होती है, तो इस समय में बच्चे बहुत जल्दी गलत चीजों में पड़ जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं. तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो लाइफ स्किल्स मैंने अपने पास रखा होता है
0: जी.
1: तो जब मैं बच्चों के साथ क्लास में रहती हूँ और मेरी लाइफ स्किल्स की क्लासेस ना जनरली इंटरैक्टिव होती हैं और कोई ना कोई गेम्स से शुरू होती हैं.
0: ओके.
1: हमेशा तो कोई ना कोई चैलेंज से शुरू होगी, कोई ना कोई गेम से शुरू होगी, तो बच्चे एंजॉय भी बड़ा करते हैं और उस गेम से वो सीख लेते हैं. अगर मुझे रेजिलियंस सिखाना है उनको कि गिव अप नहीं करना है. रेजिलियंस का मतलब क्या है? ठीक है फेल हो गए, नहीं हुआ, लेकिन बाउंस बैक करना है ना. तो एक टास्क दे दिया.
0: ओके.
1: एक चैलेंज दे दिया. जैसे कि आपको 30 मिनट्स की क्लास है तो आपको क्विक वाला करना पड़ेगा. तो मैंने 2 ग्लासेस ले लिए, एक पेपर ले लिया, अब बोला कि आपने इससे ब्रिज बनाना है और आपने ये मेरा मोबाइल स्टैंड करना है इसके ऊपर.
0: ओके.
1: ठीक है. अब बच्चे ग्रुप में टास्क कर रहे हैं और ग्रुप में टास्क कर करके अपनी दूसरी तरह से मतलब सीख रहे हैं, कर रहे हैं, मैम देना मोबाइल, चेक करें, अच्छा फिर गिर गया, ओके फिर. तो अब इस एक्टिविटी के अंदर में उन्होंने क्या किया, एक तो एक साथ काम करा, तो एक दूसरे के आइडियाज को इम्पोर्टेंस दी
0: जी.
1: अच्छा ये नहीं चला, चलो ये करके, अच्छा तू क्या कह रहा था, अच्छा व्हाट वर यू टेलिंग मी, यू नो. ओके. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी टॉट, बिकॉज सिंगल चाइल्ड इन द फैमिली डजंट लर्न दिस. सो इन द स्कूल यू गेट दैट एनवायरमेंट टू गिव दैट लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग. और दूसरा टू गिव इम्पोर्टेंस टू डाइवर्स थिंकिंग, कि हर एक के अलग थॉट्स हैं, हर एक के अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो मुझे उसको भी इम्पोर्टेंस देना है. तो ये सब बच्चे सीखते हैं इस तरह के टास्क से. और फिर उन्होंने क्या सीखा, जब हम बात करते हैं तो जब मैं पूछती हूँ अच्छा देन व्हाट हैपेंड, ओके देन व्हाट डिड यू डू देन, है ना. सो आई कीप प्रोबिंग देम एंड देन आई कीप नोटिंग डाउन द आंसर्स दैट दे कीप गिविंग, अ वन वर्ड आंसर्स.
0: ओके.
1: व्हाट डिड यू डू इन दिस, मैम वी कोलैबोरेटेड, वी डिड टीम वर्क. ओके. व्हाट डिड यू डू, वी थॉट क्रिटिकली, वी वर थिंकिंग क्रिटिकली, वी वर एनालाइजिंग, so that we do not make the same mistake again.
0: Okay.
1: You know, so okay. Did you give up at any time? No, we did not give up any time. So then what is this? This is resilience, right? So if for this particular task you did not give up, you were resilient, life also throws challenges on you. So can you take this lesson for always as in one takeaway that I'm not going to give up? Whatever circumstances be. So this is how, you know, I keep taking those classes and that helps bring connecting me with children. So they love me like crazy. They ask me, आपका पीरियड रोज क्यों नहीं होता? तो वो जब आपके साथ एक कनेक्शन बन जाता है ना, बच्चों को पता है कि हाँ मैम के पास चले जाओ कोई भी प्रॉब्लम है अगर, वी विल बी हर्ड. तो आई थिंक वो बॉन्ड इम्पॉर्टेंट है. तो हर प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ टाइम तो क्लास में जाके पढ़ाना ही चाहिए. एक तो बच्चों के नाम सारे याद हो जाते हैं.
0: एग्जैक्टली.
1: जब बच्चों के नाम सारे याद आ जाते हैं तो जब आप किसी को नाम से बुलाते हो तो वो कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है.
0: बिल्कुल
1: फील होता है वो, है ना. तो और पेरेंट के साथ भी आपका बॉन्ड बन जाता है. अच्छा मैम नोज माई चाइल्ड्स नेम ऑल्सो.
0: Okay.
1: You know, all of that. तो ये कुछ चीजें हैं आई थिंक ये बैलेंसिंग करने के लिए और ये कनेक्शन बिल्ड करने के लिए. और अगर आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके टीचर्स भी देख रहे हैं सीख रहे हैं कि मैम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. तो दैट वेज आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी माइंडफुल. हमें सोचते रहना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है. हम भी पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें. मैं आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ लिंक्डइन पे, लिखती भी हूँ अपने एक्सपीरियंसेस. तो सेमिनार्स अटेंड करते हैं, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ पर. यू नो अदर स्कूल प्रिंसिपल्स, अदर स्कूल लीडर्स ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज वर्किंग देयर, व्हाट इज नॉट वर्किंग देयर. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प. सो आई थिंक नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
0: एग्जैक्टली.

0: काफी अच्छी हमारी बात चल रही है, लेकिन थोड़ा सा समय सीमा का ख्याल रखते हुए हम आउट्रो पर आते हैं। मैम, जाते जाते आपका क्या मैसेज है हमारे लिसनर्स के लिए और जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, जितने भी टीचर्स सुन रहे हैं, उन सब के लिए?
1: मेरी लाइफ में एक चीज जो हमेशा काम करी है वो है एम्पथी। तो मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि बी एम्पथेटिक, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो अपने खुद के वेलबींग के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बाकी सबके वेलबींग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। द वे वी कम्युनिकेट, दैट्स अनदर थिंग, यू नो। तो अगर हम ह्यूमिलिटी के साथ किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी के भी दिल में जगह बना लेते हैं
0: जी।
1: तो हमारी पोजिशन, हमारी पावर हमें करप्ट नहीं करनी चाहिए। वो हमें करप्ट ना करे, हम ग्राउंडेड रहें तो रिस्पेक्टफुली बात करें तो हमें भी लोग सुनेंगे और हम भी लोगों को सुनेंगे, है ना। और तीसरी चीज़, माइंडफुल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, अभी जो सिचुएशंस चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं, उस सब की वजह से हमारे रिसोर्सेज भी हमारे पास बहुत कम है अभी।
0: एग्जैक्टली,
1: है ना, अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का माइंडफुल यूटिलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आई वुड से कि बी एम्पैथेटिक, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स एंड बी माइंडफुल ऑफ द वे यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज
0: जी।
1: बिकॉज ये रिसोर्सेज हमारे नहीं हैं, ये हमने अपनी अगली जनरेशन से लिए हैं
0: जी।
1: सो उन तक वापस ठीक ठाक
0: पहुँचाने भी हैं जी। थैंक यू सो मच मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वंस अगेन। और लिसनर्स, आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: आज के डिजिटल एरा में कंटेंट क्रिएशन सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि एक पावरफुल आइडेंटिटी बन चुका है। कैसे एक सिंपल आइडिया ऑडियंस तक पहुंचता है, कैसे क्रिएटर्स अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और इस जर्नी के पीछे कितनी क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी होती है, आज हम इसी पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं महक अरोड़ा, जो ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल और फूड कंटेंट के थ्रू दिल्ली एनसीआर और फरीदाबाद ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर चुकी हैं। वेलकम महक।
1: थैंक यू।
0: चलिए महक, सबसे पहले आपकी जर्नी डिकोड करते हैं। कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कैसे हुई, मतलब वो पहला स्पार्क या मोमेंट क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया?
1: तो कंटेंट क्रिएशन एज सच मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी कोई कंटेंट क्रिएटर बनूंगी।
0: जी,
1: मैंने तो अपनी नॉर्मल स्टडीज जब कंप्लीट करी, मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो उसके बाद मेरे को मेरे किसी फैमिली मेंबर ने मेरे को बोला कि महक, व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद मेकअप, मेकअप में आजकल कितना पैसा है।
0: जी.
1: तो आप कोई ऐसी लाइन चूज करो पढ़ाई से हटके, लोग इतना इतना कमा रहे हैं। तो हम लोग कजिन्स का नाइट से था उस टाइम, मैं घर गई और मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे ना मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो उन्होंने बोला हाँ तुझे शौक तो है, मैं ना बहुत नेल आर्ट और ये सब करने का मुझे पहले से शौक था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ अगर तेरे को करना है तो तू कर सकती है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ, मम्मी ने इनिशियली बहुत सपोर्ट किया और मैंने मेकअप सीख लिया।
0: okay.
1: अभी मैं जब मेरा मेकअप के करियर की स्टार्ट ही होता उस टाइम पर लग गया जी लॉकडाउन। अब लॉकडाउन ने तो अच्छे अच्छों का काम ठप कर दिया। मेरे जैसे जिनका करियर ही तब स्टार्ट होना था तो उनके लिए तो एक लगा लो ब्रेक लग गया उस टाइम पर। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम घर पे सिर्फ चार लोग हैं जो कि बंद हैं, मैं, मम्मी, पापा, भाई, ऑब्वियसली दो मेल्स, उनके ऊपर तो कोई कितना उनके ऊपर मेकअप ही नहीं कर सकते। तो मेरी मम्मा और मैं सिर्फ हम दो हैं। मेरी मम्मा को तो बिल्कुल मेकअप कराना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती थी, रोज सुबह कुछ नहीं है करने को, उठे, मेकअप लिया और शुरू हो गए। अब उस टाइम पे ना कोई पढ़ाई है करने को ना कुछ। अब जब आपने करियर ही एक ऐसा चूज किया तो ऑब्वियसली आपको इसी पे करना होगा।
0: Exactly.
1: तो मैंने घर से ही अपना कंटेंट क्रिएशन मेकअप में शुरू किया और फिर मैं अपनी मम्मी के ऊपर मेकअप करती थी, अपने ऊपर करती थी। उन्होंने एक दिन कराया, दूसरे दिन कराया, तीसरे दिन वो बोलती है मैं नहीं करा सकती, इतना इतना तू मेरे को मेकअप लगा देती है, मैं घर पे मेकअप करके नहीं बैठ सकती। फिर मैं अपने ऊपर करती थी, फिर मेरे को ऐसे ही ना आपका एक सर्कल बनने लगा इंस्टाग्राम पे। जैसे जैसे आपने पोस्ट करना शुरू किया, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर मेरी इंस्टाग्राम पे कहीं ग्रोथ हुई है तो वो लॉकडाउन के डेज में हुई है, क्योंकि तब सब खाली बैठे हुए थे, हर कोई इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव था। तो तब वहां पर हमारी एक कम्युनिटी बन गई। तो वहां पर मैं अपने कुछ फ्रेंड्स जो मेरे बन गए, तो मैं उनसे पूछती थी कि यार हाउ डू यू गेट ऑल दीज कोलेबोरेशन, क्या होता है ये, इसका प्रोसेस क्या होता है, हाउ डू यू गेट दिस। क्योंकि उस टाइम पर मैंने अपनी ताजी ताजी मेकअप वैनिटी बनाई थी, इतना पैसा लगाया था उस पर, तो मैंने सोचा यार अगर ये मेरे को कोलैब्स में ही मिल जाते तो कितना अच्छा होता।
0: Exactly.
1: शायद मेरा इतने इन्वेस्टमेंट जो मैंने मेकअप पे कर दिया वो नहीं करनी पड़ती। तो बस मैंने एक दो से पूछा, पर लेट मी टेल यू, कोई नहीं बताता।
0: हाँ जी,
1: कैसे कोई अपना फायदा देखता है। हर कोई बोलता था कि मुझे तो ब्रांड्स ने रीच आउट किया है, पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ब्रांड्स डे वन से आपको नहीं रीच आउट करने लगी थी, राइट? तो मैं सोचती थी कि मेरे को तो किसी ब्रांड ने आज तक रीच आउट नहीं किया। लाइक मेरे को भी ऑलमोस्ट एक साल हो गया था तब तक कंटेंट क्रिएशन में, मतलब मेकअप कंटेंट क्रिएशन में, पर तब तक भी मुझे तो किसी ब्रांड ने एज सच कोई रीच आउट नहीं किया, क्योंकि मैं मेकअप वीडियोज डालती थी। तो देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड हु टोल्ड मी कि महक, यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू ब्रांड्स, आप उनको मैसेज डालो, इस तरह का एक फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ और आप इस पे मैसेज डालो और आप उनको बोलो कि लेट्स कोलैबोरेट, लेट्स कनेक्ट फॉर सम फन कंटेंट। तो मैंने बोला ठीक है। अभी मेरा रोज का टारगेट होता था, मैं दिन के 10-20 ब्रांड्स को सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करती थी कि आई एम महक अरोड़ा विद सो एंड सो फॉलोअर्स और आई एम ऑन दिस दिस दिस प्लेटफॉर्म और आई यूज टू डू दैट।
0: जी,
1: मतलब इनिशियल डेज में मेरे को लगता है कि हर किसी को अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट करनी पड़ती है।
0: हाँ जी।
1: तो दैट्स हाउ इवन आई स्टार्टेड। तो दिन के 20 ब्रांड्स को करते थे मैसेज और जिसमें से कोई एक या दो भी ऐसे रिप्लाई कर देती थी कि राइट नाउ वी आर नॉट लुकिंग फॉर कोलैब्स बट लाइक इन फ्यूचर हम कभी देखेंगे तो वी लेट यू नो।
0: जी,
1: तो एक वो वाला टाइम भी था और अब आज एक टाइम है कि मैं 800 से ऊपर ब्रांच के साथ काम कर चुकी हूँ।
0: सो नाइस।
1: तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड और फिर तो एक के बाद एक चीजें कैसे होती गई फिर मुझे भी नहीं पता।
0: बहुत बढ़िया। आज के डिजिटल टाइम में कंटेंट क्रिएशन लोगों को इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है?
1: आई थिंक अट्रैक्ट करे भी कैसे ना, एक तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही अलग से।
0: Exactly.
1: बेसिक फोन तो आजकल हर किसी के पास है ही। प्लस आजकल मुझे लगता है कि इंडिया में तो हर घर में ही सबके पास इतना टैलेंट है तो घर घर में बैठे हुए लोग भी इतना कुछ कर रहे हैं आजकल मुझे लगता है, तो कंटेंट क्रिएशन कैसे ना अट्रैक्ट करें। प्लस इसके जो रिटर्न्स हैं वो इतने जबरदस्त है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो कैसे किसी को ना अट्रैक्ट करें। तो सबको मुझे लगता है कि हर घर में कंटेंट क्रिएशन है, हर किसी के पास अगर टैलेंट है तो उसको बेस्ट वे में यूज करो, आओ और कंटेंट क्रिएटर बन जाओ।
0: बिल्कुल सही बात है। आपके अकॉर्डिंग एक गुड कंटेंट क्रिएटर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यू शुड नॉट फॉलो एनी ट्रेंड्स, बी अ ट्रेंड सेटर रादर। आपको अपने ट्रेंड्स आप खुद सेट करो, आपको अपनी यूएसपी पता होनी चाहिए कि भाई मैं किस चीज में बेस्ट दे सकती हूँ, रादर देन जस्ट फॉलोइंग कि और क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उसको फॉलो करते रहोगे तो आई थिंक उसी में ही रह जाओगे। तो आप अपने आप को देखो, अपने में देखो कि आपकी क्या बेस्ट क्वालिटीज हैं, आप उसको अपनी यूएसपी बनाओ और उसी में ही ग्रो करो, रादर देन लुकिंग हेयर एंड देयर ना कि उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। दूसरी बात, आप कितना भी ग्रो कर जाओ लाइफ में, अभी बहुत बार ऐसा होता है हम लोग एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जहाँ पर हम 4-5 घंटे से नॉन स्टॉप बस घूम रहे हैं, लोअर बैक बिल्कुल खत्म हुई हुई है इस टाइम पे, पर स्टिल अगर उस टाइम पे मेरे से कोई मिल रहा है ना तो मैं बहुत स्माइल करके मिलूंगी उससे, मैं बहुत हंस के मिलूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये चीज यहाँ पर बोल रही हूँ, मेरी टीम को पता है, मेरी फैमिली को पता है, भले ही मैं अंदर कितने भी पेन में हूँ पर मैं वहाँ पर बहुत खुश होके सबसे मिलूंगी, क्योंकि वो ही मतलब इन्होंने ही तो मुझे बनाया है जो बनाया है आज, है ना। तो आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहना है, आप कितने भी फॉलोअर्स ग्रो हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, ये चीज मत भूलना कभी।
0: बिल्कुल सही बात है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है महक के साथ। अब वक्त है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिगनर्स और कॉन्टेंट क्रिएशन के प्रैक्टिकल साइड की।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है महक अरोड़ा। महक, अब थोड़ा बिगनर्स और प्रैक्टिकल साइड की बात करते हैं। तो जो बिगनर्स कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि बिगनिंग कहाँ से करें, उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए?
1: सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आप अपना एक नीच डिसाइड कर लो कि मुझे किस कैटेगरी पे काम करना है
0: जी।
1: फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, आप उसी के अराउंड कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो। लेट्स से फैशन है तो आपके घर पे जितने कपड़े हैं निकालो उन्हें बाहर, उनको अलग अलग पेयर करो। आजकल तो इतने टिप्स टू लाइक गेट रेडी विद मी और ये वो टिप्स हैं कि कैसे स्टाइल करें, क्या कैसे एक्सेसराइज करें। तो आई थिंक ऐसे आप ऑर्गेनिकली अपना कॉन्टेंट करना शुरू करो, ब्रांड्स खुद आपके पीछे आएंगी। लाइक वंस दे गेट टू नो अबाउट यू, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट स्टेप यही है कि सबसे पहले आपको अपना ऑर्गेनिक कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि ब्रांड्स खुद से आपके पास आए।
0: बिल्कुल सही बात है। क्या कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए एक्सपेंसिव कैमरा और सेटअप होना जरूरी होता है या मोबाइल से भी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया जा सकता है?
1: आई डोंट थिंक सो। हम तो खुद भी आज तक भी फोन से ही वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने तो कोई कैमरा या कुछ नहीं लिया है। इनफैक्ट बीच में सोचा भी था पर मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। पहले आप कैमरा से यू नो लैपटॉप में डालो, फिर वहाँ पे एडिटिंग करो, फिर आप एनी हाउ उसको पोस्ट करो। तो मेरे को ऐसा लगता है फोन से उसी टाइम आपने शूट किया, वहीं पर ही एडिट किया और पोस्ट कर दिया। जितना हैंडी और सब मेरे को फोन लगता है ना, और आजकल फोन तो हर किसी के पास है, तो बेसिकली बस आप फोन उठाओ और शुरू कर दो। वो तो फिर जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना है, तो आप नए फोन्स पे अपग्रेड होगे। अदरवाइज एक बेसिक फोन से भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो।
0: बिल्कुल। और एक क्रिएटर को अपना नीश कैसे चूज करना चाहिए, लाइक फैशन, फूड, लाइफस्टाइल या किसी और कैटेगरी में कैसे वो डिसाइड कर सकता है?
1: तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप बेस्ट किस में हो। आपको लग रहा है कि आप फूडी हो तो घुस जाओ फूड में।
0: बिल्कुल।
1: आप कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, मैंने अपने फूड कंटेंट की क्रिएशन जर्नी पूरा ऐसे ही शुरू की कि मैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे जितना भी बाहर का खाया हुआ था पिक्चर्स उस टाइम पे लेते ही थे स्नैप, तो मैंने सोचा मेरे पास तो साल भर का कंटेंट तो ऐसे ही निकल जाएगा, इतनी सारी स्नैप्स है मेरे फोन में खाने पीने की। बट देन जब आप कंटेंट क्रिएशन में आते हो ना, तब आपको चीज समझ आती है कि सिर्फ वो पिक्चर्स डालने से नहीं चल पाएगा।
0: Exactly.
1: फिर आपको प्रॉपर एंगल भी आना चाहिए फोटोज खींचने का, और सिर्फ फोटोज से नहीं चल पाएगा, फिर आपको वीडियोस भी बनानी है, सब कुछ करनी है। तो जैसा कि आपने बोला कि हम कैसे अपना एक नीश, एक कैटेगरी चूज करें, तो आप जिस भी चीज में बेस्ट हो आपको लगता है, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, फूड, जिसमें भी आपको लगता है आप धमाल कर सकते हो, कोई एक कैटेगरी चूज करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे दो अकाउंट्स है, वन इज फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड द अदर वन इज फॉर फूड। तो आप सेपरेट रख के चलो चीजों को। अगर आपको लगता है आप दो क्या तीन अकाउंट्स भी मैनेज कर सकते हो तो सेपरेट रखो, लेकिन एक ही के अंदर खिचड़ी मत पकाओ कि फूड है तो भाई उसी में ही आज एक फैशन कोलैब आया चलो ये कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: है ना, कुछ लाइफस्टाइल का आया चलो ये कर लेते हैं, तो वो बहुत खिचड़ी पक जाती है। मुझे लगता है आपका एक नीश डिसाइड होना चाहिए, फूड है तो उसको फूड रखो, फैशन है तो फैशन रखो।
0: बिल्कुल सही बात है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात होगी ट्रेंड्स, ओरिजिनलिटी और ब्रांड कोलैबोरेशंस की।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: वेलकम बैक। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंटेंट क्रिएटर महक अरोड़ा। महक, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत फास्ट मूविंग है, तो आजकल ट्रेंड्स बहुत फास्ट चेंज होते हैं, ऐसे में ओरिजिनलिटी मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है?
1: आई थिंक जितना आप ओरिजिनल रह पाओगे आप उतना अच्छा कंटेंट निकाल पाओगे, रादर देन जस्ट फॉलोइंग ट्रेंड्स, बी अ ट्रेंड सेटर, मैं तो ये बोलती हूँ। तो आपको अपनी यूएसपी पता होनी चाहिए कि मैं किस चीज में बेस्ट हूँ। ट्रेंड्स मत फॉलो करो या ट्रेंड सेट करो कि लोग आपको फॉलो करें, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि अभी मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी एक्स वाई जेड, पर बहुत सारे बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स
0: एग्जैक्टली
1: इसी मतलब हमारी सेम कम्युनिटी के सेम लोकेशन के, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि यार हर कोई अपना बेस्ट करना चाहता है, तो क्यों नहीं? अगर मुझे भी कहीं से कोई दो शब्द लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों नहीं, तो बी अ ट्रेंड सेटर, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे मत भागो, अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो, जितना वो करोगे ना आप उससे मतलब बहुत ही जबरदस्त ग्रो करोगे फिर।
0: बिल्कुल सही बात है। अगर ब्रांड कोलैबोरेशंस की बात करें तो इसको पाने के लिए क्रिएटर्स को किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, प्लस ब्रांड्स को अप्रोच करने की राइट टेक्निक क्या होती है?
1: ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका, जैसे कि मैंने बोला, आप अपनी यूएसपी पे काम करो। फॉर एग्जांपल इनिशियल डेज में मैं क्या करती थी, म्यूजिकल वीडियोस करती थी कि म्यूजिक चल रहा है उस पे वीडियोस बना लिया, बट देन मैंने एक वीडियो हिट एंड ट्रायल से ऐसे डाल के देखी कि वॉइस ओवर करके देखती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा,
0: नीचे
1: तो नहीं आएगी, और वो एक रील रातों रात 1.5 लाख व्यूज ले गई, जो कि मेरी आज तक कोई रील नहीं लेके गई थी।
0: क्या
1: अभी
0: बात
1: तक
0: है, क्या बात
1: तो
0: है।
1: फिर मुझे लगा कि शायद अब पसंद मतलब आवाज मेरी पसंद करे, तो तब से लेके आज तक वो मेरी यूएसपी है। मुझे पता है कि मेरे को ब्रांड्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, मुझे पता है कि मेरे को कैसे अपनी ऑडियंस को रोक के रखना है, तो मेरी यूएसपी मैं मतलब खुल के बोल सकती हूँ कि वॉइस ओवर्स है। जिस टाइम मेरा गला खराब होता है तो लोग मुझे आके बोलते हैं महक आर यू ओके, तो हर किसी की अपनी एक यूएसपी होती है। ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए भी आपको मैक्स टू मैक्स यही करना है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो, जितना रियल रह सकते हो वो करो। आप ये नहीं कि इसकी भी तारीफ कर रहे हो उसकी भी तारीफ कर रहे हो आप। नाउ आई एम वेरी सिलेक्टिव टू माय ब्रांड्स, ऐसा मैं हर ब्रांड के साथ काम नहीं करती
0: जी।
1: और बहुत सारी चीजें कई बार ऐसा भी हो जाता है कमर्शियल्स पे अटक गई, तो ये वाली चीजें हो जाती हैं। तो मैं मेरे को पता है कि अगर दीज आर माई कमर्शियल्स आई वर्क ऑन दिस, अगर मेरे को लगता है कि ये ब्रांड मेरे को उतना नहीं लग रहा है कि भाई दिखाने लायक या ऑडियंस में, अगर लेट्स से कि कोई एक ऐसी ब्रांड है जिसके कपड़े मैं ही नहीं पहनना पसंद करूंगी, तो वो मैं किसी और को क्या बताऊं?
0: Exactly.
1: तो मैं उस चीज में ऑब्वियसली रियल रह ही नहीं पाऊंगी, है ना, अनटिल अनलेस कि मैं उसके कपड़े मैंने नहीं खुद के लिए मेरे को लगता है कि मैं शॉपिंग कर लूंगी उनसे, तो तब तक मैं नहीं दिखाऊंगी उनको। तो बहुत सारे ब्रांड्स मैं इस बेसिस पे मना करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रांड कोलैबोरेशंस पाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी कि जो आप खुद करते हो आपको वैसी ब्रांड मिल रही है तो आप उसको करो, और दूसरा आपने बोला ब्रांड्स को अप्रोच करने के लिए राइट टेक्निक क्या होती है, तो इनिशियल डेज में होता है कि आप ब्रांड्स को मैसेज कर सकते हो कि आई एम सो ऑन इंस्टाग्राम एज आई टोल्ड यू अभी पीछे ना, इनिशियल डेज में हमने भी ऐसे किया है, पर ये बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज वाली बात है कि आपको ब्रांड्स को जब तक अपना बताना है। लेकिन फिर एक टाइम वो आ जाता है जैसे आप कंटेंट क्रिएशन करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो है वो ऐसी जगह पर वायरल हो रही है जहां पर 100 लोगों तक तो वो पहुंच रही है, तो उनमें से कोई हो सकता है 10 तो होंगे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि अपने बिजनेस के लिए आपको बुलाएंगे, तो ऐसे ही वो चेन बनती चली जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है रादर देन राइटिंग ऑल दोस इतने बड़े बड़े मैसेजेस कि आई एम सो एंड सो, कोई भी इतना वेला नहीं है कि इतने लंबे मैसेज पढ़ो, सीधा उनको लिखो कि कैन वी कोलैबोरेट, तो सीधा ऐसा लिखो तो उनको वो आपकी प्रोफाइल ऐसे ही गो थ्रू कर लेंगे और वो आपको रीच आउट कर लेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। आपके अकॉर्डिंग फॉलोअर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं या ऑडियंस एंगेजमेंट?
1: आई थिंक मेरे फॉलोअर्स 2 साल से 60-65 के बीच में ही स्टक थे, तो ऑब्वियसली किसी को भी लगता ही है जब आप आसपास वाले लोगों को देखते हो कि भाई इनके तो बहुत जल्दी ग्रो हो रहे हैं और आपके क्यों स्टक हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इस टाइम पर तो वो चीज आपको बहुत खटकती है, बट देन देयर वाज अ टाइम जब नहीं फॉलोअर्स उतने ग्रो हो रहे थे, बट देन लोगों का प्यार फिर भी मिल रहा था, एंगेजमेंट मिल रही थी, और यू नो आप कहीं पर भी जा रहे हो लोग आपको पहचान रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको लगता है कि फॉलोअर्स काउंट इज जस्ट अ नंबर।
0: बिल्कुल,
1: तो फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, अपना कंटेंट क्रिएट करो, टिल द टाइम यू आर गेटिंग गुड वर्क, टिल द टाइम यू आर गेटिंग गुड पे आउट, भूल जाओ कि फॉलोअर्स कितने हैं कितने नहीं, फॉलोअर्स तो आते रहेंगे, बस अपना कंटेंट क्रिएशन मत छोड़ो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पर जो कि हार मान जाते हैं कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि यार फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, हमने इतना टाइम एनर्जी लगा दिया इस पे तो छोड़ दो, ये मैं अपने लिए भी कहूंगी, मैंने अपना YouTube ऐसे ही छोड़ दिया कि मुझे लगा कि मेरे उतने सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, मैंने इतना इतना टाइम कर दिया और 700 सब्सक्राइबर्स है तो बढ़ ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर दूं। तो उस केस में मैंने YouTube छोड़ ही दिया, पर आज मुझे लगता है कि जितनी कंसिस्टेंट मैं Instagram पे रही थी उतनी YouTube पे भी रही होती तो आज वहां पर भी मैं वारे नारे होते मेरे।
0: बिल्कुल सही बात है। कॉन्वर्सेशन अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले लेते हैं क्विक म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद बात होगी वायरल कॉन्टेंट, बर्न आउट और एस्पायरिंग क्रिएटर्स के लिए इम्पोर्टेंट एडवाइस की। यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी के 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर। सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: हेलमेट और सीट बेल्ट पुलिस के लिए नहीं, अपने आप के लिए और अपनों के लिए पहने। फोन को साइड पर रखें, रोड पर फोकस करें।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
6: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं खास मुलाकात और हमारे साथ हैं महक अरोड़ा। महक, अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन के डीपर साइड की। तो वायरल कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट में बिगेस्ट डिफरेंस क्या होता है?
1: आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि वायरल तो आजकल कोई भी हो रहा है, कुछ भी कर

0: जितना आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाओगे वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि आप बताओ कि किधर क्या है, कहाँ पर क्या मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है, अगर आपने भी देखी हो तो, जिसमें मैं फरीदाबाद के हिडन जेम्स दिखा रही हूं. मे बी अलग अलग आप टेम्पल्स दिखाओ, कुछ मॉन्यूमेंट्स, तो आप ऐसी चीजें कुछ करो तो वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. अदर देन, क्योंकि मुझे लगता है कि रोज मेरी ऑडियंस सिर्फ स्टोर प्रमोशंस और ये सब देख के उन्हें भी ये ना लगे कि भाई महक कुछ और फरीदाबाद की ऐसी चीजें तो दिखाई नहीं रही, सिर्फ रोज पेड वर्क ले रही है
1: जी.
0: तो उसके लिए आपको एक्चुअली में दूसरी चीजों को भी उठाना पड़ेगा. कुछ कॉन्टेंट ऐसा हो कि एटलीस्ट सामने वाले को ये ना लगे कि भाई कुछ भी किया हुआ है, कि वो स्किप कर दे.
1: बिल्कुल,
0: तो वायरल तो आजकल कुछ भी हो रहा है, पर वैल्यूएबल कंटेंट में ये होना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट आप अपना जितनी नॉलेज ऑडियंस को दे सकते हो उतना दो, ताकि वो मैक्स टू मैक्स आपको फॉलो करे और आगे भी कनेक्टेड रहे कि हाँ भाई यहाँ से हमें कुछ एक्चुअल में अच्छा मिलेगा. क्योंकि वायरल कंटेंट का क्या है, आज एक रील देखी, स्क्रॉल कर दी हमने, लाइक कर दी, हंस लिए, चलो थोड़ी, पर हम उसको फॉलो नहीं करते. लेकिन हम फॉलो उसको करते हैं कि जिसमें एक्चुअली में हमें लगेगा. फॉर एग्जांपल फरीदाबाद का अगर मैं दिखाती हूँ, लोगों को लगेगा कि फरीदाबाद का, तो हाँ नेक्स्ट वीडियो भी इसकी फरीदाबाद की ही आएगी.
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए मैं इसको फॉलो करके रख लेता हूँ.
1: बिल्कुल सही बात है. कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मेंटल हेल्थ और बर्नआउट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आपके अकॉर्डिंग क्रिएटर्स को ये चीज कैसे बैलेंस करनी चाहिए?
0: मेंटल हेल्थ तो हमारी भी बहुत टाइम डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पूरा पूरा दिन आप शूट्स कर रहे हो.
1: बिल्कुल,
0: कई बार 3 से 4 शूट्स हैं आपके दिन में और पूरी रात जा रही है एडिटिंग्स में.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मेन जो मेरा काम है वो है वॉइस ओवर्स का. वो आप घर पे ऐसे नहीं कर सकते, पूरा शांति वाली जगह आपको चाहिए.
1: बिल्कुल.
0: अब मेरे घर पे 2 छोटे छोटे बेबीज हैं, जिस टाइम पे उनको दिखेगा कि बुआ इस टाइम पे कुछ रूम लॉक किया हुआ है, उन्होंने अभी वो बिजी है, तो उस टाइम पर तो उनको उस रूम में तो जरूर घुसना है.
1: बिल्कुल.
0: यहाँ पे तो क्या चल रहा है मैं देखूँ. तो आपको इस टाइम पर सिर्फ रात मिलती है, और आप कई बार मेरे को 4 बज जा रहे हैं, कभी 5 बज जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे आपको फिर सेम रूटीन फॉलो करना है. तो मेंटल हेल्थ तो बहुत डिस्टर्ब होती है कई बार, लेकिन बैलेंस हम सिर्फ ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं कि मैं अपने आप को ओवरबर्डन ना करूं.
1: बिल्कुल.
0: कि मैं दिन के 4 में, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेरा ऐसा हो गया है काम इकट्ठा, तो मैं 1 दिन की छुट्टी लूंगी, 2 दिन की छुट्टी लूंगी, मैं पिछला अपना सारा खत्म करूंगी, जब तक वो निल नहीं हो जाता मैं नए शूट पे नहीं जाऊंगी.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि हमारा तो ऐसा प्रोफेशन है कि हम अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं, हम तो पूरे फ्लेक्सिबल है ना. तो मैं नेक्स्ट शूट से उसके अकॉर्डिंग प्लान करूँ कि फिर मेरी थोड़ा मेंटल हेल्थ उस टाइम पर थोड़ी नॉर्मल हो जाती है. क्योंकि फिर आप, या फिर आप ऐसा करो, एक फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक आउटिंग प्लान कर लो. क्योंकि लोगों को दिखता है कि कंटेंट क्रिएशन जो है इट इज अ वेरी फन जॉब, विच एक्चुअली इज, नो डाउट इट इज फन जॉब, बट देन है तो जॉब ही ना.
1: बिल्कुल.
0: लोगों को लगता है कि ये तो घूमने का काम है, खाने जा रहे हैं, इधर ये करने जा रहे हैं, लेकिन आप एक दिन आकर देखो आपको पता चलेगा कि कितनी सिर खपाई है, इतने इतने कपड़े बदलने पड़ेंगे.
1: बिल्कुल सही बात है.
0: खाना खाने गए हो तो आपको दिख रहा है कि आपके सामने 10 चीजें रखी हुई हैं, पर आप खाने के पहले शूट करोगे.
1: बिल्कुल.
0: जब तक आपका खाने के टाइम आई तो 10 चीजें वो ठंडी हो चुकी हैं. आपके सामने खाना है पर आपका मन ही भर चुका है वो खुशबुओं से, और ठंडा खाना देख के आप वैसे भी नहीं खा पाओ.
1: बिल्कुल.
0: तो कई बार ये सारी चीजें बहुत हो जाती है, तो ये चैलेंजिंग है, बट देन इट इज अ गुड जॉब. तो बैलेंस तो खुद को ही करके रखना पड़ेगा.
1: बिल्कुल सही बात है. अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल बनना हो तो आपके अकॉर्डिंग वो एक कौन सी चीज है जो उसे कभी लूज नहीं करनी चाहिए?
0: आई थिंक अपनी ओरिजिनलिटी.
1: बिल्कुल.
0: आप जो हो, आप एग्जैक्टली वो दिखाओ ऑडियंस को. आप फेक मत बनो कि मैं जो हूँ ही नहीं, मैं वो बन के दिखा रही हूँ, कि मे बी मैं उस लाइफ स्टाइल में फिट ही नहीं हो पा रही हूँ, पर मैं दिखा रही हूँ लोगों को कि हाँ भाई मैं तो. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के मीटअप्स होते हैं, ऐसा होते हैं, मैं उधर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं जाती हूँ.
1: हाँ जी.
0: तो जिधर आप फिट हो पा रहे हो, आप जितना ओरिजिनल रह पाओगे, जितना कंटेंट वैसे क्रिएट कर पाओगे, वो ज्यादा बेटर है. ऐसे अदरवाइज हमारे मीटअप्स बहुत होते हैं, पर मैं इंडिविजुअल वाला काम करना ज्यादा पसंद करती हूँ. तो आप जितने ओरिजिनल रह पाओगे, जितने ऑथेंटिक, जितने रियल रह पाओगे अपनी ऑडियंस के साथ, आप उतना अच्छा लाइक एक अपना सर्कल बना पाओगे, उतने ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आप अच्छे से अच्छा काम कर पाओगे.
1: बिल्कुल सही बात है. हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: तो अगर किसी को भी अभी भी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करनी है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. बिल्कुल मत सोचो आने वाले कुछ टाइम में, मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल टॉप पे ही पहुंचने वाला है.
1: बिल्कुल.
0: आगे भी मैं इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको मैं यही बोलती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो ना, साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो. क्योंकि अगर आप दिन की एक वीडियो डाल पा रहे हो तो डालो, क्योंकि इसमें इतना पैसा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. क्यों वो वाली जॉब्स में फंसना है, बिजनेस में इतना परेशान हो रहे हैं, वो हो रहे हैं. एक बार आओ करके देखो, फिर आपको बहुत

0: आएगा, फिर आप खुद ही नहीं छोड़ोगे, आप बाकी सारी चीजें छोड़ दोगे, आप बोलोगे मुझे कंटेंट क्रिएशन नहीं करना है।
1: बिल्कुल सही बात है। आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात जरूर समझ आती है, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ रील्स और वीडियोस तक लिमिटेड नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन है। महक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इतनी इंसाइटफुल बातें शेयर करने के लिए।
0: थैंक यू।
1: मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे थे खास मुलाकात सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: आज की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि उस एक्टर की है जिसने बताया कि हीरो दिखता कैसा है ये जरूरी नहीं, हीरो काम कैसा करता है असली बात वही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और इनकी कहानी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
2: यूपी का एक छोटा सा कस्बा बुढ़ाना, वहाँ से एक लड़का निकलता है हाथ में केमिस्ट्री की डिग्री लेकर। कुछ वक्त नौकरी की पर दिल नहीं लगा। पता है दोस्तों, एक्टिंग का चस्का उन्हें ऐसा लगा कि वो दिल्ली पहुंच गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। पर एनएसडी में दाखिला लेना तो सिर्फ पहला कदम था, असली चैलेंज था अपना पेट भरना। नवाज ने वहाँ के एक बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी की। सोचिए, पूरा दिन गार्ड की ड्यूटी और शाम को एक्टिंग की प्रैक्टिस। उन्होंने ठान लिया था कि काम चाहे कोई भी हो, मंजिल से ध्यान नहीं हटाना है। 1996 में जब वो मुंबई आए तो उन्हें लगा था कि उनका हुनर उन्हें रास्ता दिखा देगा, पर मुंबई की भीड़ में वो कहीं खो से गए। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां उनके लुक्स उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गए।
1: और बाद में कैसे उनका स्ट्रगल चालू हुआ करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूँ मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप लोग जानते हो कि एक वक्त ऐसा था जहां नवाज के पास ना सर पर छत थी और ना ही जेब में पैसा, सिर्फ एक पुराना खत था जो उन्हें हर रोज गिरने से बचाता था। वो खत किसका था, करेंगे इसके बारे में बात। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में और उनकी स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: मुंबई में नवाज का कोई गॉडफादर नहीं था। वो ऑडिशंस देते पर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आप हीरो जैसे नहीं दिखते। साल दर साल बीतते गए, वो 12 साल तक छोटे मोटे रोल्स करते रहे। कभी सरफरोश में एक मिनट का रोल, तो कभी मुन्ना भाई MBBS में एक पॉकेट मार। पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों के साथ एक कमरे में रहते और उनके लिए खाना बनाते ताकि रहने की जगह मिल सके। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो टूटने लगे थे, तब उनकी माँ ने उन्हें एक खत लिखा। उसमें लिखा था, बेटा कचरे के ढेर की जगह भी 12 साल में बदल जाती है, तू तो फिर भी इंसान है, हिम्मत मत हारना। बस वही एक लाइन उनका सहारा बन गई। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे।
0: और कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने छोटे छोटे रोल्स के बाद करा फैजल खान का रोल, द आइकॉनिक रोल, करेंगे इसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीता।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: हर इंसान की लाइफ में एक सेटबैक आता है और फिर हर इंसान कमबैक करने की कोशिश करता है, और ऐसा ही था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ में। अभी तो सिर्फ स्ट्रगल था, अब देखिए असली धमाका, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे किरदार की जिसने रातों रात बॉलीवुड के सारे बड़े स्टार्स की छुट्टी कर दी थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं द लेजेंडरी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और उनकी लाइफ की स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: कहते हैं ना कि टैलेंट को आप ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रख सकते। 2012 में वक्त ने ऐसी करवट ली कि पूरा बॉलीवुड देखता रह गया। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई और पर्दा फट गया। नवाजुद्दीन जब फैजल खान बनकर स्क्रीन पर आए तो लोगों को समझ आया कि असली एक्टिंग क्या होती है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये नवाजुद्दीन का उन सारे रिजेक्शंस को जवाब था जो उन्होंने बरसों तक झेले थे। कहानी फिल्म के गुस्से वाले ऑफिसर से लेकर वासेपुर के गैंगस्टर तक नवाज ने रातों रात सबको अपना फैन बना दिया। जो इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट करती थी आज वही उनके पीछे लाइंस लगाए खड़ी थी। उनका स्ट्रगल अब हिस्ट्री बन चुका था।
0: और कैसे उन्होंने बॉलीवुड से रेड कार्पेट तक का सफर किया, करेंगे इसके बारे में भी बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, एंड मेरे साथ स्टोरी नरेट कर रही है रीत।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहे हैं।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: Ha ha ha.

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा?

0: सोचिए, एक वक्त जिस शख्स ने दूसरों के बंगलों के बाहर पहरा दिया, आज उसका अपना घर देखकर दुनिया दंग रह जाती है। वॉचमैन की वर्दी से लेकर कांस के एक्सपेंसिव टक्सीडोस तक, ये सफर सिर्फ सक्सेस नहीं, एक स्टेटमेंट थी। लेट्स टॉक अबाउट हिज फाइनल फ्लाइट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और कैसे उन्होंने रेड कार्पेट तक का सफर किया। करेंगे इसके बारे में बात, और इसके बारे में नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: आज का सीन देखिए दोस्तों, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कभी वॉचमैन थे, आज कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स में उनका बोलबाला है। मुंबई में उनका अपना एक शानदार बंगलो है जिसे उन्होंने नाम दिया है नवाब। ये उनके पिता के लिए एक सम्मान है और उनकी अपनी मेहनत का इनाम। नवाजुद्दीन की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपके पास पेशेंस है और आप अपनी स्किल्स पर काम करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उड़ने से नहीं रोक सकती। उनकी ये उड़ान आज हर उस यंग ड्रीमर के लिए एक उम्मीद है जो जीरो से शुरू कर रहा है।
0: जहां लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सफर चुना, क्योंकि असली पहचान मंजिल से नहीं संघर्ष से बनती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9654896896। मैं फिर मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभवों को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर हैं और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद। धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ, देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजन्स हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशंस में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibes. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में उस स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं। तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट्स आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं। इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतर तम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है। उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपकी थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता। और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में
2: देखिए। स्किन डोनेशन मैं ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है। कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है, मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
1: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्परेरी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं। उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना है, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है, स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन, ये आपको अश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो। यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है तो उसकी स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ किसी शॉर्टकट के फेवर में नहीं होती। आप चाहो मेहनत करो फिर भी सब कुछ स्मूथ नहीं चलता। आज बिजनेस अनप्लग में मैं किसी नाम से शुरुआत नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सम स्टोरी डिजर्व पेशेंस, उन्हें धीरे धीरे खुलना चाहिए। मैं हूँ गीत एंड हियर वी टॉक अबाउट पीपल जो ओवरनाइट सक्सेस के पोस्टर पर नहीं आते, लेकिन जिनकी जर्नी रियल होती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनकी लाइफ में रिसोर्सेज कम थे, ऑप्शंस लिमिटेड थे और एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा। बैकग्राउंड सिंपल था, फैमिली भी सिंपल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ ने बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा दी थी। फॉर्मल एजुकेशन एक पॉइंट के बाद कंटिन्यू नहीं रह पाई, नॉट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं था बट बिकॉज सर्वाइवल केम फास्ट। जब आपको चूज करना पड़े ना बिटवीन डिग्री एंड डेली नीड्स, तो ड्रीम्स थोड़ा वेट पर चले जाते हैं। इस इंसान ने भी वही किया, फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा सिर्फ इसीलिए ताकि काम मिल सके। अर्ली इयर्स में इनको ये समझ आ गया था कि कंफर्ट जोन जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो काम मिला वो किया, नो ईगो नो कंप्लेंट्स। 2 साल तक पूरी सिंसेरिटी के साथ इन्होंने ट्राई किया, बट बिजनेस डजंट ऑलवेज रिवॉर्ड अफोर्ड इमीडिएटली। वो वेंचर फेल हो गया एंड दैट फेज वॉज रियली टफ। पैसे का प्रेशर, घर का प्रेशर और खुद से एक सवाल, अब आगे क्या। देयर वॉज अ डे जब बेसिक थिंग्स भी स्ट्रगल बन जाती, सब एक साथ हैवी लगता, और यही वो वक्त होता है जहाँ लोग रुक जाते हैं। बट ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती, क्योंकि जब सब कुछ नेगेटिव लग रहा था तब इस इंसान ने एक सिंपल चीज नोटिस की, चाहे लाइफ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लोग एक चीज एंजॉय करना नहीं छोड़ते, समथिंग टेस्टी, समथिंग कम्फर्टिंग। फूड इज इमोशन, और जब इमोशन समझ आए तो बिजनेस भी डायरेक्शन दिखाता है। अभी ये सिर्फ एक थॉट था, एक ऑब्जर्वेशन, एक्शन अभी बाकी था। कैसे एक ऑर्डिनरी स्पेस जैसा एक सिनेमा हॉल एक टर्निंग पॉइंट बन गया, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत। और आज मैं एक ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी लाइफ ने इजी मोड कभी ऑन ही नहीं किया। अब कहानी थोड़ी और रियल होने वाली है। बिजनेस फेल हो चुका था, सेविंग ऑलमोस्ट जीरो और फैमिली की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली प्रेशर में थी। इस फेज में इस इंसान ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं लिखा, बस एक चीज की, काम। जो काम मिला वो किया, कभी एक सिनेमा हॉल के अंदर, कभी उसके बाहर, कहीं काउंटर्स पे हेल्प, कहीं पोस्टर चिपकाना, कहीं सीट रिपेयर, कहीं छोटी मोटी मेंटेनेंस। सैलरी ज्यादा नहीं थी बट इट वॉज ऑनेस्ट वर्क। एंड ऑनेस्टली ये वही स्टेज होती है जहाँ ईगो या तो टूट जाता है या फिर कैरेक्टर बन जाता है। लाइफ यहाँ भी स्मूथ नहीं थी, रेंट के इश्यूज, बेसिक एक्सपेंसेस का स्ट्रेस, इतना कि एक टाइम पर घर छोड़ना भी पड़ा। इमेजिन दैट मोमेंट जब आप सिर्फ इसीलिए शिफ्ट करते हो क्योंकि आप अफोर्ड नहीं करते हो, बट स्लोली हार्ड वर्क नोटिस होने लगा। सिनेमा हॉल की कैंटीन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मंथ कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड इनकम, इट वॉजंट बिग मनी बट इट वॉज स्टेबिलिटी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, रोज लोग मूवी देखने आते, हंसते, चिल करते और इंटरमिशन में एक ही चीज ढूंढते, कुछ खाने की। ये इंसान सिर्फ काम नहीं कर रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था, लोग क्या पसंद करते हैं, कौन से फ्लेवर्स चाहते हैं, कौन सी चीज रिपीट होती है, विदाउट एनी MBA, विदाउट एनी फॉर्मल रिसर्च, बस रियल लाइफ डेटा। और यहीं पे पहली बार दिमाग में इनके एक थॉट आया, व्हाट इफ आई क्रिएट समथिंग। अभी कोई बिजनेस प्लान नहीं था, बस एक आइडिया था। और आइडियाज अक्सर सबसे पहले चुप होते हैं और इस पॉइंट पर ना कोई ब्रांड था, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई इन्वेस्टमेंट का बैकअप, बस एक्सपीरियंस और एक स्ट्रॉन्ग विल कि इस बार कुछ अलग ट्राई करना है। कैसे एक छोटी सी शुरुआत होम मेड लेवल से स्टार्ट होती है, कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट लोगों का फेवरेट बनने लगता है, ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। गाना सुनते हैं पहले, गाने के बाद लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।
1: We back. Just

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटोस, अपने एम्बिशन सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

वेलकम अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपको एक जर्नी सुनाने वाली हूँ बिना नाम बिना ब्रांड सिर्फ स्ट्रगल चॉइसेस और ऑब्जर्वेशन की कहानी। अब टाइम है उस नाम को सामने लाने का जिससे इस कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज चंदू भाई वीरानी, फाउंडर ऑफ बालाजी वेफर्स। यस, वही बालाजी वेफर्स जिसके पैकेट्स आज ऑलमोस्ट हर घर, हर शॉप, हर एज ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। सोचो, जो सफर एक सिनेमा हॉल की कैंटीन से स्टार्ट हुआ आज वो इंडियन स्नैक इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है। चंदू भाई वीरानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बालाजी वेफर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक हैबिट बना दिया। आज बालाजी वेफर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ऑपरेट करती है। गुजरात से शुरू हुआ ये ब्रांड आज नेशनल प्रेजेंस रखता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स वेफर्स, सेव, नमकीन रेंज हर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग होल्ड। टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ में है और ये प्योर नंबर्स हैं। बालाजी वेफर्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, इट्स अ फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन जहां 5000 लोग काम करते हैं। सोचो, उस इंसान को जो कभी रेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज हजारों फैमिली की आशाएं उसके विजन से जुड़ी हुई हैं। फैक्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लॉजिस्टिक, रिटेल रीच, एवरीथिंग बिल्ड स्टेप बाय स्टेप, नो ओवरनाइट मैजिक। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बालाजी वेफर्स ने कभी फ्लैशी एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा डिपेंड नहीं किया। प्रोडक्ट ने खुद अपना काम किया, टेस्ट ने मार्केटिंग संभाली। चंदू भाई वीरानी आज भी सिंपल थिंकिंग और लॉन्ग टर्म विजन के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं है बल्कि ट्रस्ट का था। ट्रस्ट ऑन क्वालिटी, ट्रस्ट ऑन कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट ऑन पीपल। और शायद इसीलिए बालाजी वेफर्स सिर्फ मार्केट में नहीं लोगों के रूटीन में भी है। तो क्यों ना अभी एक गाना सुन लिया जाए। गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी बिकॉज दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट वेफर्स, इट्स अबाउट डिसीजन। सो स्टे विद मी, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक छोटा सा पॉज लिया जाए और उनके चाइल्डहुड में डाइव किया जाए। इनका चाइल्डहुड दरअसल फ्लैशी नहीं था, नो बिग ड्रीम्स, नो बिग एक्सपोजर, बस एक सिंपल सा घर और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ में सब कुछ इजिली नहीं मिलता है। ये स्कूल ज्यादा दूर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, नॉट बिकॉज कैपेसिटी नहीं थी, बट प्रायोरिटीज अलग थी, फैमिली फर्स्ट, सर्वाइवल फर्स्ट। बचपन में ही ये सीख मिल गई थी कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जो जरूरी है वो करना पड़ता है, और शायद यही अर्ली लर्निंग बाद में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि ये स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ और स्केल कहाँ तक पहुँचा। अब सवाल ये है, बीच में ऐसा क्या किया गया जिसने एक स्मॉल सेटअप को एक सॉलिड बिजनेस बना दिया? बिकॉज ऑनेस्टली आइडियाज बहुत लोगों के पास होते हैं, एग्जीक्यूशन सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। बालाजी वेफर्स के केस में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये था कि क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे डिमांड कम हो, चाहे मार्जिन थोड़े टाइट हो, टेस्ट और कंसिस्टेंसी कभी नेगोशिएट नहीं करी जाएगी। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज, स्लो बट कंट्रोल्ड ग्रोथ, नो अननेसेसरी एक्सपेंशन, नो चेजिंग ट्रेंड्स, जो प्रोडक्ट चला उसे और बेहतर बनाया जाएगा। कंपनी ने कभी ये नहीं सोचा कि सब कुछ एक साथ करना है, फोकस क्लियर था। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मार्केटिंग नॉइज कम रखा गया, नो फ्लैशी कैंपेन्स, नो ओवर प्रॉमिसिंग एड्स, प्रोडक्ट बोला, कस्टमर ने ट्रस्ट बिल्ड किया और वर्ड ऑफ माउथ ने ब्रांड को ग्रो किया। यह अप्रोच थोड़ी ओल्ड स्कूल लग सकती है बट एक्सट्रीमली पावरफुल है। बालाजी वेफर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी बहुत ग्राउंडेड रहा, लोकल मार्केट्स को पहले स्ट्रॉन्ग किया और फिर आगे बढ़ा। ये स्ट्रेटेजी ये प्रूव करती है कि नेशनल बनने से पहले लोकल होना बहुत जरूरी है बॉस। और एक चीज जो पर्सनली मुझे बहुत स्टैंड आउट लगती है, पीपल मैनेजमेंट। कंपनी सिर्फ मशीन्स और फैक्ट्री से नहीं चलती, लोग चलाते हैं। और जब आप हजारों लोगों के साथ काम करते हो तो कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, कल्चर में भी होनी चाहिए। यहीं पे बालाजी वेफर्स एक बिजनेस से ज्यादा एक सिस्टम बन जाता है। नो ड्रामा, जस्ट क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन। और शायद इसी वजह से ये ब्रांड डिकेड्स के बाद भी रेलेवेंट है। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: जाने का मलाई। सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। आज की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो ना तो वो ये होगी, सक्सेस इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग बिग, इट्स अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंस। और आज हमने जिस जर्नी की बात की ना उसमें कोई शॉर्टकट था ना कोई मिरेकल मोमेंट। ये स्टोरी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सी इंडस्ट्री चूज करें, ये सिखाती है कैसे सोचा जाए, कैसे प्रेशर में भी क्लैरिटी मेंटेन की जाए, कैसे ग्रोथ के चक्कर में कोर को लूज ना किया जाए। एक सिंपल माइंडसेट, अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है, अगर इंटेंट क्लियर है तो स्केल टाइम के साथ आता है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपके डिसीजन करते हैं। और आज जब हम बिग नंबर्स, बिग फैक्ट्रीज और बिग ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सब एक फेज के बाद आता है। पहले फेज में सिर्फ पेशेंस होता है और प्रोसेस। और बिजनेस अनप्लग्ड का पर्पस भी यही है, सक्सेस को ग्लोरीफाई नहीं करना है, जर्नी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आज की स्टोरी से आप एक चीज ले जा रहे हो तो वो ये हो, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड स्टे ऑनेस्ट टू द प्रोसेस। मैं हूँ आरजे गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। कल फिर मिलेंगे एक और रियल स्टोरी के साथ, एक और ग्राउंडेड जर्नी के साथ। टिल देन कीप बिल्डिंग, कीप बिलीविंग और कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: water, save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम.

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी में।

चक्कर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहे हैं।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी किसी ऐसी जगह को देखा है जो दूर से सच कम और ख्वाब ज्यादा लगी, जहाँ पानी के बीच एक महल चुपचाप खड़ा हो, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दिन में सूरज की रोशनी उसे सोना बना देती है और रात में वो चांद का अक्स लगता है। वो कहा है कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, वो आंखों में उतर जाती है। और इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजी अंजली और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम चल रहे हैं पिंक सिटी, जयपुर के दिल में बसी एक मिस्टीरियस और खूबसूरत जगह की तरफ, जिसका नाम है जल महल। अब सवाल ये है कि पानी के बीचों बीच आखिर ये महल क्यों आया? तो सोचिए जरा, एक महल और वो भी झील के बिल्कुल बीच में।

अब बात जल महल की करे तो ये महल बना था 18th सेंचुरी में महाराजा माधव सिंह के दौर में। ये महल असल में रॉयल डक हंटिंग लॉज के रूप में यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे ये जयपुर की पहचान बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जल महल के 5 फ्लोर हैं, पर जब आप इसे देखते हैं तो सिर्फ 1 फ्लोर नजर आता है। अब बात आई बाकी, मतलब बाकी के फ्लोर पानी के अंदर। कुछ खूबसूरतियां पूरी दिखाई नहीं देती, शायद इसलिए और भी खूबसूरत हो जाती है। जब बात हो ही रही है इस जादुई महल की, तो वापस आकर जानेंगे आर्किटेक्चर का जादू क्या है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: जान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंचली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवां, जहाँ आज हम पहुँच गए हैं पिंक सिटी यानी जयपुर के जल महल। और अगर इस महल की बात करें तो आइए चलिए जानते हैं इस महल का आर्किटेक्चर का जादू। जल महल राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल मिक्स है। लाल सैंडस्टोन से बना ये महल अपनी सिमेट्री और सिंप्लिसिटी का मास्टरपीस माना जाता है। फिर बात करें छतरिया, मेहराब और उनका पानी में रिफ्लेक्शन, जैसे आर्किटेक्चर और नेचर एक साथ पेंटिंग बना रही हो। और जब मॉनसून में लेक बाहर जाती है तो महल लिटरली पानी पर तैरता हुआ लगता है। वो कहा है कि पत्थर भी कभी कभी इतने खूबसूरत लगते हैं कि वक्त उन्हें तोड़ने की बजाय संभाल कर रखते हैं। अब बात कर रहे हैं इस लेक की, तो आइए जानते हैं मानसागर लेक की कहानी। जिस लेक में जल महल बसा है उसे कहते हैं मानसागर लेक। ये आर्टिफिशियल लेक थी जो पानी स्टोर करने के लिए बनाई गई थी, पर धीरे धीरे ये महल और लेक जयपुर का पोस्ट कार्ड बन गए। सुबह के वक्त जब सूरज का रिफ्लेक्शन पानी पर पड़ता है तो पूरा सीन सिनेमैटिक लगता है, जैसे कोई ओल्ड रॉयल फिल्म चल रही हो। लेकिन ये महल सिर्फ अपने आर्किटेक्चर की वजह से नहीं जाना जाता, ये महल अपने अंदर बहुत सारी मिस्ट्री एंड साइलेंस छुपाए बैठा है, जिनके बारे में बातें करेंगे वापस आकर। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इसलिए आपके साथ, और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं जल महल के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है सबसे मिस्टीरियस बात क्या है? आज भी लोग जल महल के अंदर फ्रीली नहीं जा सकते, दूर से सब उसे देखते हैं, पर अंदर की दुनिया अब भी काफी हद तक हिडन है। और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से जल महल और भी मैजिकल लगता है। वो कहा है कि हर खूबसूरत चीज का थोड़ा मिस्टीरियस होना जरूरी है। अब बात करें राजस्थान की शाम, तो शाम के वक्त जल महल के आसपास की हवा ही अलग लगती है। रोड साइड चाय, राजस्थानी म्यूजिक, ठंडी हवा और सामने लेक में चमकता महल, एक मोमेंट के लिए लगता है जैसे वक्त भी धीरे धीरे चलने लगा हो। वो कहा है कि कुछ शामें आवाज नहीं करती, बस याद बनकर रह जाती है। इसलिए शायद इस जगह को माना जाता है फोटोग्राफी का पैराडाइज। इस बारे में भी वापस आकर बातें करेंगे। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम पहुंच गए हैं पिंक सिटी यानी जयपुर के जल महल। बात हमने बहुत सारी की आज इस महल के बारे में और आपको ये भी बताया कि इस महल को कहा जाता है फोटोग्राफी का पैराडाइज, यानी फोटोग्राफर्स के लिए जल महल हेवन माना जाता है। सनराइज सनसेट रिफ्लेक्शन शॉट्स, हर एंगल से ये महल अलग मूड क्रिएट करता है, कभी रॉयल कभी लोनली कभी ड्रीमी, जैसे एक महल नहीं एक इमोशन हो। और शायद यही रीजन है कि अपने साथ ये महल कल्चर एंड आइडेंटिटी लेकर चलता है। जल महल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये राजस्थान की रॉयल एलिगेंस का सिंबल है। एक रिमाइंडर कि इंडिया में आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती, कहानियां होती है। और हर कहानी में पानी हवा रोशनी और वक्त अपना रोल प्ले करते हैं। और शायद यही वजह है कि जल महल हमें खूबसूरत बात सिखाता है कि हर चीज को पास जाकर समझना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें दूर से ही दिल में उतर जाती हैं। वो कहा है कि हर महल में शान नहीं होती, कुछ में सुकून भी होता है। और जल महल भी उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ पानी भी कहानी सुनाता है। अगर कभी आप जयपुर जाओ तो जल महल के पास थोड़ी देर जरूर रुकना, हो सकता है वहाँ की हवा आपके अंदर के शोर को थोड़ा कम कर दे। इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर मिलेंगे एक और जगह एक और कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल।

0: कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बस उनसे जुड़ी यादें और गहरी हो जाती हैं। कुछ कहानियां पर्दे पर खत्म जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनके किस्से हमेशा बाकी रह जाते हैं। मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर, जहां हर वीकेंड हम बात करते हैं उन फिल्मों और गानों की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं एक इमोशन बन जाते हैं। और आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्म्स की जिनके गाने जितने खूबसूरत हैं उनके पीछे की कहानियां उतनी ही इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म से जहां रिवेंज के साथ साथ एक इंसान का बदलाव भी देखने को मिलता है। और बदलाव की बात हो ही रही है तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मूवी है बदलापुर।
1: लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए, मैं भी यही मानता हूं, लेकिन उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के बाद।
0: और इस मूवी की हम बात करें तो पहली नजर में लगता है कि ये सिर्फ रिवेंज की कहानी है, लेकिन अगर आप फिल्म को ध्यान से समझो तो इसका टाइटल ही उसकी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करता है। बदलापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि बदला से बदलाव तक का सफर था। और शायद इसलिए फिल्म की एंडिंग भी लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दी गई। यानी कि पहले इस मूवी में एयरपोर्ट क्लाइमेक्स प्लान हुआ था, लेकिन जब रेनी एंडिंग शूट हुई तो मेकर्स को लगा उसमें इमोशंस ज्यादा नेचुरली फील हो रहे हैं, और वही सीन फाइनल रखा गया। और रियलिज्म इतना इम्पोर्टेंट था कि जेल सीन्स जो भी हमें इस मूवी में देखने को मिले वो रियल नासिक जेल में शूट हुए, जहां एक्चुअल इनमेट्स भी मौजूद थे। और मैंने मूवी के बारे में इतना बता दिया आपको, लेकिन जो मेन कैरेक्टर था यानी कि वरुण धवन की परफॉर्मेंस

अगर हम बात करें तो उस इंटेंसिटी के लिए उन्हें स्पेशली कुछ लेयर्ड और इमोशनल फिल्म्स देखने को बोला गया था ताकि वो कैरेक्टर को और डीपली समझ सके। और इतना ही नहीं, एक और डिटेल जो काफी लोगों ने नोटिस भी नहीं की होगी इस फिल्म में, वो ये थी कि जेल कॉप्स जो इनफील्ड यूज करते हैं वो उस वक्त मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुए थे, लेकिन इस मूवी में देखने को मिले। मतलब फिल्म का हर सीन डिटेलिंग के साथ क्रिएट किया गया था। अब इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में गाना जीना जीना। और इस गाने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जहां सस्पेंस को इतना केयरफुली हाइड किया गया कि क्लाइमेक्स रिलीज से सिर्फ कुछ वक्त पहले ही शूट हुआ था। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। Stay tuned.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
2: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी जिसका क्लाइमेक्स एंड में शूट किया गया, उस मूवी का करते हैं सस्पेंस खत्म और बताती हूँ आपको उस मूवी के बारे में। जी हाँ, उस मूवी का नाम था एक थी डायन।

और अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेकर्स ने इसे टिपिकल हॉरर फिल्म की तरह ट्रीट ही नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग ये एक मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी साइकोलॉजिकल स्टोरी थी, इसलिए कहानी को किसी पुरानी हवेली में नहीं बल्कि एक रिलेटेबल वर्ल्ड में सेट किया गया। और सस्पेंस को मेंटेन करने के लिए फिल्म का क्लाइमेक्स रिलीज से सिर्फ एक महीने पहले शूट हुआ ताकि डायन की आइडेंटिटी लीक ना हो जाए। और अगर आपने फिल्म ध्यान से देखी हो तो उसमें लिजार्ड सिंबोलिज्म भी बार बार नजर आता है, क्योंकि फोकलोर के अकॉर्डिंग विचेस अपने रूप बदल सकती हैं। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि फिल्म की स्टोरी एक्चुअली मुकुल शर्मा की शॉर्ट स्टोरी मोबियस स्ट्रिप से इंस्पायर्ड थी, मतलब फिल्म का हर एक एलिमेंट केयरफुली लेयर्ड था। अब इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में गाना यारम। और इस गाने के बाद बात होगी एक ऐसे करेक्टर की जिसका साइलेंस भी काफी कुछ कह जाता है। और जिस मूवी में एक करेक्टर देखने को मिला वो मूवी जितनी सिंपल दिखे नहीं। कौन सी थी ये मूवी और कौन सा था ये करेक्टर बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले हिंट दिया था कि एक ऐसी मूवी जो सिंपल सी दिखती है लेकिन है नहीं, उस मूवी का नाम है तलाश।
1: हम जैसे लोग तो गिनती में नहीं आते, और जो है ही नहीं वो गायब कैसे हो सकते हैं?
2: रात नहीं जागते हैं
1: कि मेरी जगह
2: गुनाहों के घर
1: यहाँ कोई नहीं आता।
2: इनकी राहें खोल
3: थैंक यू, मुझे नहीं रोजी को बोलो।
1: रोजी कौन? रोजी
0: तलाश उन फिल्म में से एक है जो धीरे धीरे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है, और इस मूवी का सुपर नेचुरल एंगल एक्चुअली एक रियल अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था, जो कि जोया अख्तर और उनके फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस किया था। और अगर हम आमिर के लुक की बात करें तो उनकी मूंछ भी काफी डिस्कशन का पार्ट बनी, क्योंकि कैरेक्टर को थोड़ा सीरियस और मैच्योर फील देने के लिए उस लुक को स्पेशली क्रिएट किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिल्म मुंबई बेस्ड थी लेकिन इम्पोर्टेंट सीन्स पॉन्डिचेरी में शूट हुए, और अंडर वाटर सीक्वेंस लंदन स्टूडियो में कंप्लीट हुआ। मतलब स्क्रीन पर एक सिटी नजर आ रही थी लेकिन उसके पीछे मल्टीपल लोकेशंस का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो चलिए, इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो सुनते हैं विशाल डडलानी और शंकर महादेवन की आवाज में जी ले जरा गाना। और इस गाने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जहां स्टाइल भी था, पावर भी, और डायलॉग के साथ साथ म्यूजिक भी लोगों के दिल में उतर गया। कौन सी मूवी का था ये गाना और कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, कितना भी कर ले घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
4: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ।

0: 89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि एक ऐसा गाना जो सबके दिलों में उतर गया, तो ये गाना जिस मूवी में सुनने को मिला है बताती हूँ आपको उस मूवी के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की।
1: सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बम्बई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ भीगी बिल्ली बन के बैठा है।
2: ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा।
1: क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है तो।
2: हल्के में मतलब चुप रहो।
0: और इस फिल्म की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड की कहानी नहीं थी, बल्कि दो अलग पर्सनालिटीज और दो अलग सोच का सफर भी थी। यानी कि एक तरफ सुल्तान मिर्जा, जिसे अजय देवगन ने प्ले किया और जो रियल लाइफ हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड माना गया था, और दूसरी तरफ सोहेब, जिसका करेक्टर दाऊद इब्राहिम की पर्सनालिटी से इंस्पायर्ड था। मतलब रियल लाइफ और सिनेमा का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्गली नजर आता है। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी है कि रणदीप हुडा ने ये फिल्म 3 बार रिजेक्ट की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी बड़ी कास्ट के बीच उनका करेक्टर शायद प्रॉपरली नोटिस ना हो। लेकिन बाद में डायरेक्टर ने उन्हें काफी कन्विंस किया और वो मान गए। और फिल्म में जो विंटेज कार अजय देवगन यूज कर रहे थे वो उन्हें इतनी पसंद आई कि प्रोड्यूसर एकता कपूर ने वो कार उन्हें गिफ्ट कर दी थी। अगर मुझे भी किसी मूवी में ऐसे ही गिफ्ट मिले तो मैं भी एक मूवी तो जरूर करना चाहूंगी। खैर, इस फिल्म की इतनी बात हो ही गई है तो चलिए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में गाना पी लूं। और इसी खूबसूरत गाने के साथ वक्त हो चला है मेरे जाने का। उम्मीद करती हूँ आज की ये म्यूजिकल जर्नी आपके दिल तक जरूर पहुँची होगी। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड कुछ नए गानों और उनके पीछे छुपी कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चलाते रहिए और म्यूजिक को सिर्फ सुनिए मत, महसूस भी कीजिए। गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक

0: करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: बाबा, बाबा।
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: चला अर्जुन, शुरू हो जा।
5: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
5: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
4: इरशाद।
5: अरे आगे खाली हो जाएगी।
4: क्या
5: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
4: कौन हम?
5: रोडवेज वाले।
4: ओके।
5: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
4: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
5: क्या बात कर रहे
4: हो।
5: आगे सुनो।
4: सुनाओ।
5: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
4: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
5: अरे सुनो,
4: बाय।
5: मीठे लस्सी तो पीता हूँ।
6: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
7: सुन भाई सुरेंद्र।
8: हाँ भाई सुरेंद्र।
7: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी। 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए। शाम

0: मोदी कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
1: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, बदलाव बड़ी बातें नहीं, छोटी सी शराफत मांगता है। अडॉप्ट

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: जॉनी जॉनी,
4: यस पापा।
3: बाइक चलाना है?
4: यस पापा।
3: हेलमेट पहनना है?
4: ओके पापा।
3: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
4: नो पापा।
3: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: बोल नहीं पाते वो कहीं ना कहीं लिख दिया जाता है। और शायद इसीलिए हर दौर की अपनी एक आवाज होती है, अपनी एक शायरी होती है। एक वक्त ऐसा था जब प्रेमचंद जैसे लेखक समाज को अपनी कहानियों में उतार रहे थे। फिर एक ऐसा दौर आया जहां जॉन एलिया साहब जैसे पोइट्स ने फीलिंग्स को बिना किसी फिल्टर के सामने ला दिया, और आज वही अल्फाज स्टेज पर जीते हैं, महसूस होते हैं, मंच पर आवाज बन जाते हैं। हे हाय, मैं हूँ आरजे गीत और शो है आज दिल शायराना। और मेरे साथ शो में बहुत सारे कवि और कवित्री मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। पंकज राणा जी, सुनील शर्मा जी, रेणु मिश्रा जी और कमल धमेजा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ आज, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो इन क्वेश्चन के जरिए हम चाहते हैं कि लिटरेचर जो कहीं पीछे छूट गया है वो हम फिर से उसको ला पाए, और आज के जो यंगस्टर्स हैं वो समझ पाए कि पोइट्री को किस इमोशन में लिखना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये सबसे है, हम बारी बारी आएंगे सबके पास, और सवाल ये है आप क्यों लिखते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता हो कि अगर पोइट्री ना होती तो आपके जो इमोशन है, आपकी बातें जो है वो आप कहाँ रखते। तो मैम आपसे ही शुरू करना चाहूंगी मैं ये सवाल। रेणु मिश्रा जी।
2: जी मैम, हम एक्चुअल में लिखते हैं अपने मन के भाव को लिखते हैं, और उन भावों को हम, मेरे भाव कुछ और हो सकते हैं, दूसरे के कुछ और हो सकते हैं, लेकिन कोई भाव ऐसे होते हैं जो हम सबसे मिलते जुलते होते हैं, तो उन भाव को हम व्यक्त करके अपनी लेखनी से चलाते हैं, और उन भाव के तार हम दूसरों के भाव से जुड़ते हैं और हम संदेश दे जाते हैं एक, और शायद उनके दिल से भी वो भाव मिलते होंगे
0: जी।
2: तो हम इसलिए लिखते हैं कि लोगों तक वो बात पहुंचे और एक समाज को वो सही दिशा दिखा सके। हम
0: जी
2: हम अपनी लेखनी में चला लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी हम प्रेम जो है उसे भी हम प्रीत को भी ढाल लेते हैं, और कभी हम देश के लिए भी कुछ शब्द, जब हम देखते हैं कि देश में अभी कुछ ऐसा कुछ होने वाला है तो उस समय हमारे खुद की अपनी आवाज आने लगती है कि हमें भी इस देश के सैनिक बनते तो शायद हम ऐसा कर पाते, और हम उस जगह पे खड़े होते तो कुछ करते। तो हम लोगों तक ये संदेश दे पाते हैं सिर्फ अपनी लेखनी से, अपने भावों को व्यक्त करते। तो मैं सोचती हूँ कि एक कवि जो है, एक साहित्यकार जो है, वो एक समाज का दर्पण होता है, और वो अपनी चीजों को लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है
0: जी।
2: और वही मैं भी शायद कर लेती हूँ लेखनी के माध्यम से।
0: जी जी जी।
3: मैंने कोरोना का दौर था जब लिखना स्टार्ट किया
0: जी,
3: और बहुत सारे गीत लिखे कि कोरोना पे जो त्रास दी थी उसके बारे में भी लिखा, और जो लोग कह नहीं पाते कुछ बातें जो हम कह नहीं पाते, तो वो शब्दों में कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से शब्दों को पिरोते हैं, और जब आप सब लोगों के सामने पेश करते हैं
0: जी,
3: मन की भावनाओं को पेश करते हैं।
4: लिखने का तो मेरे को, मैं बचपन में मैं लिखती थी, जब कोई मुझे कुछ बोल देता या मेरा मन उदास होता या कोई ऐसी कोई बात होती तो मैं कुछ लिख देती अपने मन की, जो भी बातें मेरे मन में आती, चाहे मैं आंसू ही बहा रही हूँ, रो रही हूँ, या कोई किसी ने, दोस्त ने कुछ बोल दिया तो मैं लिख देती थी। एक बार तो मैंने कुछ ऐसा लिखा कि वो शायरी थी, लेकिन मैं जानती भी नहीं थी तब कि ये मैंने शायरी लिखी है ये
0: जी।
4: लेकिन मुझे डायरी लिखने का भी बड़ा शौक था, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें लिखती रहती थी, यही था मेरा। और मैं कभी ये कभी मैंने ये नहीं, पहले गीत भी गाती थी मैं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी कवित्री बनूंगी या कभी ऐसा कुछ होगा। तो वही है, जब वो कोरोना का दौर आया और हाथ में मोबाइल आया तब सब लिख रहे थे, तो मुझे इतना आता भी नहीं था कि कैसे लिखना है, कैसा नहीं। लिखना तो आता था लेकिन कैसे, किस तरीके से, क्योंकि हमारी जो ये लाइन है उसमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जो गिनती में लिखे जाते हैं।
0: हाँ जी,
4: कुछ चीजें तो खुद ही लिखी जाती हैं जो स्वतंत्र लिखते हैं, और कुछ होते हैं कि जैसे गजल होगी
0: मीटर में
4: होती है, कुछ तो मीटर में ही होते हैं, वो करना पड़ती है। तो धीरे धीरे हमने फिर लिखना सीखा, और अपने मन की बातें सब लोगों में लाना, और अपने आप को भी बड़ी तसल्ली होती थी कि मैंने कुछ लिखा, या कोई अप्रिशिएट करता था कि आपने कुछ लिखा। तो धीरे धीरे करके बस जुड़ते चले गए, बस यही नहीं है कि हमें किसी को दिखाना, बस ये होता है कि लिखने से मन का जो बोझ है, जो दर्द है,
0: वो हल्का हो जाता है। बिल्कुल।
5: सभी श्रोताओं को हरियाणा गौरव सुनील शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच में अपनी मन की बात कहने के लिए
0: जी,
5: क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था लिखने का। जिस वक्त मैं कक्षा पाँच, चार पाँच का विद्यार्थी हूँ, तब से ही मैं कुछ ना कुछ शायरी वगैरह, कक्षा छह में चला गया, फिर कुछ गीत लिखा, फिर जैसे जैसे व्यस्त होता गया और क्लासेस में आगे बढ़ता गया तो मेरा लिखने के भाव मतलब बढ़ते गए। ठीक है ना। तो फिर जब मैं फिर कॉलेज पूरा करने के बाद बाहर निकला तो थोड़े दिन के बाद ऐसा हो गया जैसे मेरी आत्माएं थम गई हो। काम के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में वो लेखन, क्योंकि इतना ज्ञान भी नहीं था ये लेखन क्या है,
0: जी जी,
5: लिखना क्या है, क्या शब्द कहाँ जोड़ना है, कहाँ मात्रा देनी है, कहाँ क्या देना है, तो इन चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। जब उसके बाद मैंने 2003-04 के करीब फिर मैं एक मंच पे गया, ऐसे ही गया तो ऐसे ही सुनने के लिए, लेकिन मेरे मन में भी उथल पुथल हुई, जो अंदर दबे पड़े भाव थे वो निकलने शुरू हुए। और मंच पे जाकर के मैंने कुछ अपने पुराने शब्द, शायरियां थी वो मैंने वहाँ पे दी, तो वहाँ से फिर मेरे को एक ललक, जिसको कहते हैं ना ललक, फिर लिखने की ललक लगी
0: जी।
5: फिर मुझे कुछ मेरे मित्र मिले, उन्होंने बोला कि अनवरत लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जैसे कि आजकल जो लोग हैं, जो यंग हमारे पोइट्स हैं, बहुत ज्यादा श्रृंगार के बारे में लिख रहे हैं. मैं इस बात को बिल्कुल ऐसे डिनाई नहीं कर रही हूँ कि श्रृंगार पर नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन एक वक्त ऐसा था जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी जैसे जो राइटर थे वो समाज को आईना दिखा रहे थे, समाज के लिए लिखते थे. तो आज आपको कितना लगता है कि आजकल के जो लोग हैं वो जो लिख रहे हैं उसमें उनकी सोसाइटी या उनका देश भी दिखता है?
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रखी है. क्योंकि श्रृंगार वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आजकल जो लोगों का जो चलन हो गया है, जो पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे पास आ चुकी है, तो वो समाज का तो दर्पण नहीं दिखा रहे, समाज को सोचते हैं, वो तो समाज को बल्कि एक बोझ समझते हैं.
0: जी जी,
1: मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग भी हैं तो उन्हें लगता है कि ये हमसे दूर रहे. और वो आज की मीडिया जो हमारे साथ जो है, हमारा जो इंटरनेट जो कनेक्शन है, इससे वो क्या है, आकर्षित होते हैं और प्रेम के गीत सुन रहे हैं. देखो पहले जो था, पहले के कवि जो लिखते थे वो समाज से संदेश पर कविताएं लिखते थे जो लोगों तक पहुंचती थी और लोगों को सुधारने का एक रास्ता भी दिखाती थी.
0: जी.
1: और अभी जो मिलते हैं, हम यह मूवी देख ले, ये हमारे सभी बच्चों के मतलब एक देखा जाए साहित्य का क्षेत्र ही है, चाहे हम समाचार पत्र पढ़े, चाहे मूवी देखे, चाहे हम कोई पत्रिका पढ़े या नॉवेल पढ़े, तो जो हमारे पास परोसा जा रहा है वही बच्चे ग्रहण कर रहे हैं एक्चुअल में.
0: पंकज राणा जी आपके पास आते हैं, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी. जब आप मंच पर होते हैं, मंच से पहले क्या कोई ऐसा कोई प्रैक्टिस है जो आप डेली करते हैं ताकि आपके मंच पे जाके फंबल ना हो?
2: देखिए कि पोइट्री, जब कभी हम कवि सम्मेलन में जाते हैं तो पहले देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से रखा गया.
0: हाँ जी.
2: जैसे कोई जयंती है तो हम तैयारी करके जाते हैं, उसमें पता रहता है कि भाई ये हमें रचना वहाँ पढ़नी है. मैं अपनी बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं सोचता, बस मंच पे गया और सुना दिया.

0: कमल धमेजा जी आपके पास आती हूँ, आपका ही सवाल है ये। पंकज राणा जी ने जो अभी सवाल कहा कि कोई ना तो कोई कॉपी बनाई है, गुरु जी जो थे वो, जो हर एक आर्ट का कोई ना कोई गुरु होता है, हमारा मेंटर होता है। जैसे अगर हम म्यूजिक की बात करें या हम डांस की बात करें, लेकिन अगर हम पोइट्री की बात करते हैं तो बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि कोई गुरु हुआ है ना, कि सिखाया गया है फिर आगे वो गए हैं बच्चे, वो पोइट बने हैं, तभी शायद ऐसा हो रहा है कि लोग कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें कोई भी मीटर नहीं है, कुछ नहीं है और बस लिखा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि पोइट्री में भी मेंटोर होने चाहिए, गुरु होने चाहिए?
1: बिल्कुल, गुरु के बिना तो कैसे ना, ज्ञान ही नहीं है
0: जी।
1: तो गुरु है तभी है, क्योंकि वही वाली बात है कि भाव तो हम लिख लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे कहीं भी, पर वही है कि गुरु होना जरूरी है। और मेरे गुरु भी हैं, जरूर हैं, वो हैं लखनऊ से हैं
0: जी,
1: डॉक्टर कमलेश वर्मा जी हैं वो।
0: सुनील जी आपके पास आते हैं सर, एक सवाल है। पहले लिटरेचर बहुत स्लो था, लोग वक्त देते थे, मंचों पर भी बहुत वक्त देते थे, समझते थे, लेकिन अब सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, बिकॉज ट्रेंड भी है। आपको क्या लगता है कि जो अभी स्पीड जो चल रही है, इससे लिटरेचर ग्रो हुआ है या पीछे छूट गया है?
2: क्या है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर आदमी ये चाहता है कि जो 2 घंटे का सफर है वो मैं 10 मिनट में तय।
0: हाँ जी बिल्कुल।
2: इससे क्या है, हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां, वो सब समाप्त होती है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता सब समाप्त होता जा रहा है, और आगे बढ़ने की होड़ में हम अपने लेक्चर को बिल्कुल पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा होना चाहिए, समाज के अंदर अपने आप से, खुद से जो हमारी लेखनी है, एक अच्छा संदेश जाए
0: जी,
2: समाज उसके ऊपर अमल करे, नई पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छा संदेश जाए। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि ये देश यूं ही चलता रहे मस्ती के साथ, और हमारी संस्कृति ऐसे जिंदा रहे।
0: आपसे एक और सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, अकेले कमरे में बैठी हुई कोई अच्छी सी लाइन या मंच की तालियां, क्या ज्यादा पसंद है? और बहुत ऑनेस्ट आंसर चाहती हूँ आपसे।
2: मुझे मंच की तालियां पसंद है।
0: ये ऑनेस्ट आंसर है आपका।
2: क्या मुझे मंच की तालियां पसंद
0: है। कोई ऐसी रचना जिस पे आपको मंच पर बहुत ज्यादा तालियां मिली हो और मिलती रही हो, वो रचना हम जरूर सुनेंगे।
2: जी, जी, जी। पहले 4 पंक्तियां
0: जी
2: निवेदित करता हूँ,
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
2: सभी श्रोताओं के बीच में
0: जी,
2: के भरी महफिल में खिलता गुलाब हूँ, भरी महफिल में खिलता गुलाब हूँ, चढ़ते हुए सूरज का ऐसा स्वभाव हूँ, मिले जो मुझको होकर रह जाए मेरा ही, मिले जो मुझको होकर रह जाए मेरा ही, बस इस भरे मैखाने की असली शराब हूँ।
0: क्या बात है।
2: और 4 पंक्तियां देखिए, के मोहब्बत का तेरे होठों पर पैगाम लिख दूंगा, मोहब्बत का तेरे होठों पर पैगाम लिख दूंगा, महकती शाम लिख दूंगा, छलकते जाम लिख दूंगा, तोड़ कर लाज के बंधन चली आओ इन बाहों में, तुम्हारे दिल की धड़कन पर मैं अपना नाम लिख दूंगा।

0: सब को सब नहीं।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना, एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: हमीजा जी, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है, मंच की तालियां या फिर अकेले कमरे में बैठी हुई कोई सच्ची लाइन?
1: देखो, अगर अकेले कमरे में बैठी ही अच्छी लाइन लिखी जाती है और तालियां किसे पसंद नहीं
0: जी, तो कोई रचना जो आप यहाँ पर आज रखना चाहें, हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहें?
1: जरूर, पहले मैं चार पंक्तियां आपके सामने अपने फौजी भाइयों के लिए

0: बहुत बढ़िया पंकज जी, आपके पास आते हैं, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको, मंच की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई कोई सच्ची लाइन?
1: अच्छी लाइन लिख जाए और मंच पे तालियां, मुझे, मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि तालियां बजाए, मेरी लाइन इतनी सबको इतनी अच्छी लगे कि तालियां अपने आप बज उठे।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: मुझे ये पसंद है
0: जी।
1: और मैं आपको सौंपता हूँ चार लाइनें अपने आराध्य के लिए प्रभु श्री राम से शुरुआत करता हूँ।
0: जी जी जी।

केवट पार उतारा, प्रभु ने केवट पार उतारा। लोगों ने कहा कि श्रृंगार, अभी उनकी बात पे आता हूँ कि लोग पर श्रृंगार फोड़ ना हो, कि श्रृंगार कैसा लिखा जाए, कि प्रेम क्या है, भात नरसी कलाए थे वो प्रेम है, साग विदुर घर खाए।

सबरी के। और प्रेम पे मैंने लिखा कि मैं प्रेम पे लिखता हूँ तो भगवान के प्रति, और ये प्रेम लिखता हूँ कि शुद्ध प्रेम लिखने की कोशिश होती है। प्रेम पतित पावन निर्मल।

0: क्या बात है।
1: अपनी रचना जो मेरा अध्याय।
2: मैम आपके पास आते हैं, आपसे भी यही सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
0: मुझे तो अकेले में लिखना ही पसंद।
2: मुझे यही एक्सपेक्ट था आपसे,
0: लिखना पसंद है। और जब हम लिखेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों तक तो वो आवाज जाएगी, जब लिखेंगे नहीं तो सुनाएंगे।
2: एग्जैक्टली जी,
0: तो मैं यही बोलती हूँ। तो मैं चार पंक्तियाँ देश के नाम समर्पित करती
2: हूँ। जी जी,
0: और माँ शारदे को नमन करती हूँ। झुका कर आसमां हमको सितारे तोड़ लाना है। मैं यही संदेश देती हूँ लोगों को कि डरना नहीं है हमें।

0: वैसे मेरे सवाल और भी हैं, पर समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर हैं, और जाते जाते सबसे एक सवाल ये है कि आपके लिए कविता क्या है? बस इसी सवाल से हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मैम आपसे सवाल है, कविता क्या है आपके लिए?
1: मेरे लिए कविता एक मेरे मन के भाव है, उद्गार है, जो मेरे मन में जैसे भाव आते हैं मेरे संबल बना मेरे लिए। कविता मेरे लिए शक्ति बनी। जब मेरे पति संसार से चले गए तो मेरे को लगा कि मेरी लेखनी मेरे साथ है तो मुझे दुनिया की किसी के साथ की जरूरत नहीं है, और मैं इसे अपने संबल मानती हूँ, अपनी शक्ति मानती हूँ।
0: जी सर, आपके लिए?
2: कविता मेरे लिए एक आत्मा है
0: जी,
2: कि हम अपने मन के भाव जब प्रकट करते हैं सब कुछ हम लोग कह नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने पिता को खोया तो मैंने उनके ऊपर जब चार लाइनें लिखी तो बहुत, मैं आपको चार लाइनें चलते चलते सुना भी देता हूँ कि मैंने लिखा, जब

0: मन के भाव हम जो नहीं सबके सामने प्रकट कर पाते हैं
1: जी,
0: लोगों को लगता है कि वो कविता है पर वो मन के भाव होते हैं
1: जी। मेरे लिए कविता मेरा दुख दर्द मेरी हर खुशी कविता है
2: जी।
1: और जब मैंने चार पंक्तियां स्टार्ट करी थी लिखना उस वक्त, और वही बात है कि उस दिन ही मैं फेसबुक से जुड़ी थी और लोग लिख रहे थे, आया था टाइटल पिता, तो उसी दिन मेरे पापा का एक साल हुआ था, मेरे पापा इस दुनिया से गए थे, तो बस तभी से मैंने लिखना शुरू किया
2: जी।
1: कविता बस मेरे साथ मेरा दुख दर्द और मेरे जिस्म से हर एक चीज से जुड़ी हुई है, जिसमें कि जो मैं कह नहीं सकती, जो आंसू मैं आंखों में रो के रखती हूँ वो अपने कागज पर मैं उसे उतार देती
2: हूँ जी। सर आपके लिए कविता क्या है?
3: कविता मन के भाव है। कविता जो भी हमारे मन में भाव आए वो हमने एक कागज पे उतारे वही कविता बन जाती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ये विश्व युद्ध के मुहाने खड़ा है और हम देख रहे हैं निर्दोषों की जान जा रही है,
0: बिल्कुल
3: वहीं से मानवता बिल्कुल नष्ट होती जा रही है, ठीक है, तो वहीं से भाव उतर करके आए हैं

0: गुबार है। सिर्फ ये चार पंक्तियां ही दूंगा इस गीत की
1: जी।
0: के अट्टहास मौत का सिहर उठा शहर शहर, अट्टहास मौत का सिहर उठा शहर शहर, जार जार रो रहे दर्द की उठी लहर, गूंजती हवाओं में ये कैसा चित्कार है।

0: अंधकार है, बस यही कविता है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब मेरे साथ जुड़े और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई। कहते हैं कि वक्त बदलता है, प्लेटफॉर्म बदलते हैं, लेकिन जो असली होता है वो हमेशा दिल तक पहुंच ही जाता है। आप सुन रहे थे आज दिल शायराना, मैं आपसे विदा लेती हूं और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिसनर्स तक इतनी खूबसूरत रचनाएं पहुंचाने के लिए।
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत आभार
1: जी। जी और लिसनर्स, आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके। सपना हूँ मैं आपके साथ और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज मैं जिस स्टार की बात कर रही हूँ उनके लिए तो अपना फेवरेट किरदार पाना जैसे चौधरी का चांद हो गया था, क्योंकि झूठ बोलकर जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इन्हें बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिला और एक मुकाम तो ऐसा आया जब इन्हें लगा कि बस अब मेरी यही इमेज हिंदी सिनेमा में फिक्स हो चुकी है, इससे हटकर मैं कोई भी किरदार नहीं निभा पाऊंगा। लेकिन अंदर एक जीन तो थी कुछ नया और स्टाइल करके दिखाने की, पर इनकी इच्छा पूरी हुई अपने फिल्मी करियर के 20 साल बाद। जी हाँ, हम लोग अक्सर ये कहकर हार मान जाते हैं कि इतना वक्त हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मुझे मेरी फेवरेट चीज नहीं मिल पा रही है या वो चीज जो मैं कर सकती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। सोचिए, इन्होंने 20 साल इंतजार किया अपने उस सपने को पूरा होते देखने के लिए। आज किसकी बात कर रही हूँ जरूर बताऊंगी आपको, लेकिन हाँ, ये कैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर रहे जिन्होंने पूरी फिल्म का भार अपने कंधों पर ले रखा था, ये मजबूत कंधे किसके थे अभी नहीं बताऊंगी। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को। वापस आकर एक बार फिर से स्वागत करूंगी आप सभी का एक मजबूत किरदार के साथ।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: चलिए उस दौर में जहाँ शर्मिला की अदाएं
2: चांद का रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा.
3: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया.
1: हेलन के ठुमके और मधुबाला की सुंदरता के चर्चे थे हर जुबान पर. तो सुनिए ऐसे ही किस्से सुनहरी दौर की सपना के साथ. रात बाकी बात बाकी में.

और इनीता फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, कैसी पहेली है जिंदगानी, सुनिधि चौहान की आवाज में इस गीत को आप सभी एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ और आज बात करने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जिंदगी भी किसी पहेली से कम नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 10th क्लास के बाद ही ये घर से ऑलमोस्ट भाग गए थे। क्या थी ये स्टोरी आपको बताऊंगी, फिलहाल नाम बता देती हूँ मैं आज के कलाकार का। और ये थे हमारे अपने असित सेन साहब, जिनका जन्म 13th मई 1917 को गोरखपुर में हुआ। और क्योंकि इनके पिताजी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाया करते थे, ग्रामोफोन और रेडियो का काम किया करते थे, तो असित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपने पिताजी की उस दुकान पर बैठना। तभी इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से भागने का कोई उपाय बनाया जाए। और तभी इन्हें पता चला कि इनकी दादी जी प्लान कर रही हैं इनको शादी के बंधन में बांधने का। तो इन्होंने तो मौका लगते ही एक चौका लगाया और अपने पिताजी से कहा कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता जाना चाहता हूँ, और तुरंत ही ये कोलकाता के लिए निकल गए। पर क्या आप जानते हैं, ये पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना था, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं करनी थी बल्कि फिल्म मेकिंग करनी थी। पर इनके लिए तो कुछ बड़ा इंतजार कर रहा था, और ये था फिल्म मेकिंग का चस्का, जिसके चलते इन्होंने झूठ बोला कि ये पढ़ना चाहते हैं और कोलकाता आए थे। पर यहाँ पर एज अ प्रोफेशन इन्हें फिल्म मेकिंग तो नहीं मिली, लेकिन हाँ इन्होंने अपनी इनिशियल स्टेज को फोटोग्राफी के नाम कर दिया। बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, इसलिए इन्होंने इसी चीज को एक्सेल करना ठान लिया, और देखते ही देखते इनका काम काफी अच्छा चल पड़ा। साथ ही इन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया ताकि फिल्म मेकिंग के गुण सीख लें। पर कहते हैं ना, होता तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, तो इनके लिए कुछ और ही मंजूर था ऊपर वाले को। क्या करने आए थे और क्या कर रहे थे और आगे क्या होना बाकी था, ये सभी बातें हम करते रहेंगे। फिलहाल सोना जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया, गाने की बात कर रही हूँ। ओ मेरे सोना रे सोना, ओरिजिनली इसे गाया था आशा भोसले जी ने और इसे पिक्चराइज किया गया था आशा पारेख जी।

0: सोनी।
1: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
2: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
3: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: अंबर सरिया सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म फुकरे। और एक बार फिर से इसी गीत के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। रात बाकी बात बाकी में सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ। और आज हम रात बाकी बात बाकी में असित सेन साहब की बात कर रहे हैं, जो कि ये कहकर भागे थे कोलकाता कि मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई ना करके नितिन बोस साहब के साथ फिल्म मेकिंग सीखने का प्लान बनाया। और साथ ही इन्होंने कोलकाता का न्यू थिएटर ज्वाइन किया ताकि एक्टिंग की बारीकियों को समझ पाए। पर होता तो वही है जो मंजूर है खुदा होता है। तो भाई साहब, जहां पर ये कमान पकड़ रहे थे एक्टिंग पर, वहीं इन्हें एक बार फिर से बुलावा आया इनकी जन्मभूमि गोरखपुर से, क्योंकि इनके पिताजी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनकी रिटायरमेंट पार्टी को शूट करने के लिए इन्हें बुलाया गया। और यहां आकर जब इन्होंने इस पूरे इवेंट को कवर किया तो हर कोई इनकी फोटोग्राफी का कायल हो गया। इतना ज्यादा इन्हें प्रेज किया गया कि थक कर इन्होंने 1932 में गोरखपुर में ही अपना एक फोटोग्राफी स्टूडियो स्टार्ट कर लिया। स्टूडियो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया, और फाइनली सबको ये लगने लगा था कि चलिए अब तो ये प्रोफेशनली सेटल हो चुके हैं गोरखपुर में। पर यहाँ पर वक्त आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और क्योंकि फोटोग्राफी का सारा सामान इंग्लैंड से आता है इसलिए इन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। और इस बार इन्होंने रुख किया मुंबई का, और यहाँ पर इन्हें एक फिल्म मेकिंग कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम भी मिल गया। पर तभी इनके घर से एक बुलावा आया, क्योंकि इनके दो फैमिली मेंबर्स बहुत ही सीरियस थे और उन दोनों को खो देने का गम कुछ इस तरह इन पर भारी पड़ा कि ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और गोरखपुर में कई सालों तक वो इसी गम में रहे। पर वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सवेरा आता है, तो इनकी जिंदगी का सवेरा भी हुआ। और इस बार इन्होंने अपने आप को रिवाइव करने के लिए कोलकाता को चुना, और यहाँ आकर इनके साथ जो हुआ वो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ था बताऊंगी आपको, पर उससे पहले हम बुला लेते हैं ऋषि कपूर साहब को, जो आपको अपने दिल की कहानी चीख चीख कर सुनाना चाहते हैं।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।
1: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
2: सुन भाई सुरेंद्र।
3: हाँ भाई सुरेंद्र।
2: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
3: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: जिनकी मुस्कान ने लाखों दिल जीते, पर उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से जो किसी ने ना सुने, तो सुनिए रात बाकी बात बाकी में सपना के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। वैसे जितना दर्द इस गाने में है उतना ही दर्द कुछ लोगों की जिंदगी में भी होता है, पर जब हम उन्हें बड़े पर्दे पर देखते हैं तो हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि इतनी स्ट्रगल भी उन्होंने कभी की होगी। फिलहाल स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, सपना हूँ मैं आपके साथ। और आज रात बाकी बात बाकी में हम असित सेन साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कोलकाता ऐसी सिटी को चुना और यहाँ आने के बाद एक दोस्त की मदद से उनकी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा मुखर्जी और उनके पति देव मुखर्जी से हुई, और इन दोनों को उनका अंदाज कुछ इस तरह भाया कि वो उन्हें ले गए डायरेक्टर बिमल रॉय के पास, जो कि अपने लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, और असित के रूप में उन्हें वो थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर मिल चुके थे। और बिमल रॉय के साथ मिलकर उन्हें कई फिल्मों में असिस्ट किया, जिसमें परिणीता, बिरज बहू, देवदास, दो बीघा जमीन, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों के नाम शामिल हैं। अब चलिए, जब बात आ ही चुकी है देव बाबू की, यानी कि दिलीप कुमार साहब की देवदास की, तो उसके बारे में बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी सारी बातें हैं उस फिल्म के बारे में करने के लिए कि मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड तो हम ऐसे ही खत्म कर देंगे। फिलहाल थोड़े छोटे में इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। इस फिल्म की मेन कास्टिंग में आपने दिलीप कुमार, जो कि देवदास का रोल प्ले कर रहे थे, सुचित्रा सेन, जो पारो के रूप में नजर आई थी, और साथ ही वैजयंती माला को देखा था चंद्रमुखी के रूप में। पर क्या आप जानते हैं कि पहले पारो का किरदार मीना कुमारी जी को ऑफर किया गया था? बिमल रॉय चाहते थे कि इस किरदार को सिर्फ मीना कुमारी ही करें, पर उनके हस्बैंड कमल अमरोही साहब ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जो कि बिमल रॉय चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मीना कुमारी को इस फिल्म से बाहर करना पड़ा। दूसरा मेन रोल था चंद्रमुखी का, जिसके लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था, पर सब ने इनकार कर दिया। ये एक्ट्रेसेस नरगिस, बीना रॉय और सुरैया थी, पर इन सब के ठुकरा दिए जाने के बाद ये कैरेक्टर पहुंचा वैजयंती माला जी के पास, और क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तुरंत इस रोल के लिए हाँ कर दिया, जिस रोल के लिए बाद में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। पर क्या आप जानते हैं कि वैजयंती माला वॉज दी फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्म फेयर को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जितना ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए था। ये कहकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस अवार्ड को, एंड फाइनली शी बिकेम दी फर्स्ट एवर एक्ट्रेस हु रिजेक्टेड फिल्म फेयर। और इस फिल्म का मेन कैरेक्टर हमारे देव बाबू, जिन्होंने तो हिस्ट्री रच दी। 1955 में आई फिल्म देवदास उनकी 27th हिट फिल्म थी बॉलीवुड में, 27वीं हिट फिल्म। OMG, शायद इसीलिए इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। अच्छा, वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, पर एक गाना ऐसा था जो कि इस फिल्म में नहीं डाला गया था। SD बर्मन साहब का तैयार किया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, जिसे फिल्म में तो जगह नहीं मिली, लेकिन हाँ 10 साल बाद देवानंद साहब की फिल्म गाइड में इस गीत को लिया गया और बन गया ये एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। एंड दैट सॉन्ग वॉज पिया तो से नैना लागे रे। क्या बात है, कितनी सारी स्टोरीज होती है ना एक फिल्म के पीछे, कितने सारे फैक्ट्स होते हैं जिनसे हम शायद हमेशा के लिए अनजान रह जाते हैं। पर वापस चलते हैं अपने असित सेन साहब की ओर, जो कि फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर एक फिल्म ने उनका पूरा प्रोफाइल ही बदल के रख दिया भाई, उन्हें बना दिया सपोर्टिंग एक्टर। कौन सी थी वो फिल्म जिससे उन्होंने एक्टिंग का डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, ये आपको जरूर बताऊंगी, और किसने दिया था ये रोल ये भी शेयर करूंगी। पर फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का।

0: दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: क्या आप जानते हैं, बच्चे की सेहत की शुरुआत माँ के गर्भ में ही हो जाती है। सही पोषण मतलब स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा। तो जुड़िए पोषण की पाठशाला में आरजे अंजलि के साथ, जहाँ हर शनिवार और रविवार सुबह 10 से 11 बजे बात होगी माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और सही पोषण पर, जहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे गायनी, न्यूट्रिशनिस्ट और योग गुरु, सिर्फ आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए।
4: तो सुनना ना भूलें पोषण की पाठशाला, सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक है जी रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना हूँ मैं आपके साथ और आज रात बाकी बात बाकी में हम बातें कर रहे हैं असित सेन साहब की, जिनकी लाइफ को अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी स्ट्रगल करना पड़ा है इन्हें। जहाँ पहले इन्होंने अपने आप को एज अ फोटोग्राफर अपने होम टाउन में सेट करने की कोशिश की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ से इन्हें आना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। वहीं कोलकाता आने के बाद इन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं फिल्मी जगत में कुछ अपना करियर बना सकता हूँ। तभी इन्होंने बिमल रॉय साहब को असिस्ट करना शुरू किया। कई फिल्में उनके साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने डायरेक्ट की, पर वो आता है ना एक आपका सैचुरेशन पॉइंट जहाँ आपको ऐसा लगता है कि दैट्स इट, अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से कुछ फिल्मों को डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो एज अ डायरेक्टर इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, पर साथ ही साथ ये फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी कर रहे थे, जिसमें इन्हें 1945 में पहली बार हमराही फिल्म में देखा गया था। बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, इतना छोटा सा कि फिल्म में कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। 1949 में छोटा भाई फिल्म में एक छोटा कैरेक्टर, वो भी बहुत ही छोटा था पर हाँ विजिबल था, एक नौकर का किरदार इन्होंने निभाया और यहाँ से ये सबके नोटिस में आने लगे थे। और क्या आप जानते हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था, इसकी इंस्पिरेशन भी इन्होंने अपने घर में काम करने वाले एक सर्वेंट से ही ली थी। जिस तरीके से वो बोला करता था और जिस तरीके से वो सीरियस सिचुएशन को भी कॉमिक वे में प्रेजेंट करता था, एग्जैक्टली उसी से इंस्पायर्ड इन्होंने ये कैरेक्टर फिल्म छोटा भाई में प्ले किया था। पर 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद में इनके कैरेक्टर को फाइनली लोगों ने प्रेज किया और इन्हें इनके अंदाज के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए एक टेंशन का टॉपिक भी बन गया था क्योंकि वर्सटाइल होना चाहते थे ये, पर इनकी एक कॉमिक इमेज इंडस्ट्री में फिक्स हो चुकी थी जो कि अब इनके लिए एक टेंशन का मुद्दा बन गया था। इसलिए इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक्टिंग से दूर करना शुरू किया और डायरेक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट किया। पर क्या वो डायरेक्शन में हिट हो पाए, ये बताऊंगी आपको, पर फिलहाल वक्त है कुछ ट्रैक्स का। एंजॉय करते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, दूल्हे का सहरा, सुहाना लगता है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपते जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: पहले पर्दे का जादू वीडियो पर फिर लौटने आ रही है सपना लेकर अपना शो रात बाकी बात बाकी हर शनिवार और रविवार रात 8

0: सोनी त्रिवेदी कुमार की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे जुल्मी सावरिया, और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। रात बाकी बात बाकी में आज हम बातें कर रहे हैं असित सेन साहब की, जिन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स करना भी स्टार्ट कर दिया था अलोंग विद हिज डायरेक्शन। जहां इन्होंने एक जगह 1958 में चलती का नाम गाड़ी फिल्म में अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार मधुबाला जी के साथ काम किया, वहीं दूसरी ओर इन्होंने आनंद फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काम किया। सुजाता, 20 साल बाद, किताब, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों में ये दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि इनके कुछ कैरेक्टर्स तो इतने ज्यादा पसंद किए जाते थे कि उन पर फिल्में बनने लगी थी। जी हाँ, सही सुना आपने, उन पर फिल्में बनने लगी थी। जैसे कि इनका एक फिल्म का कैरेक्टर था जिसमें इन्होंने गोपी चंद जासूस का कैरेक्टर प्ले किया था। वो कैरेक्टर इतना हिलेरियस था कि फिल्म एक्टर राजेंद्र कुमार ने अपने भाई नरेश कुमार के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम गोपी चंद ही रखा गया था। पर जैसा कि सब सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें असित दूर दूर तक नजर नहीं आए। सिर्फ फिल्म इंस्पायर्ड थी उस कैरेक्टर से जो उन्होंने फिल्म में प्ले किया था। इसी बात को लेकर वो इतना ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि वो फिल्मों में रोल कर रहे थे, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी, और क्योंकि इनका कंपटीशन उस वक्त के बड़े बड़े कॉमेडियंस जैसे जॉनी वॉकर, महमूद असरानी, केस्टो मुखर्जी, जगदीप जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ था, तो इन्हें भी ऐसा लगता था कि ये वो मुकाम हासिल कर जाएंगे जो वो कर रहे थे। खैर, इनके अंदाज में जो मस्ती और जो चुलबुलापन था वो आपको सुनाती हूँ, पहले आप उसे एंजॉय कीजिए।
1: देश के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। आज हमारे बीच पंडित जी नहीं है, नेता जी नहीं है, गांधी जी नहीं है, और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती।
0: इतना जबरदस्त टैलेंट होने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि कोई निराश होकर एक्टिंग के करियर से दूर जाना चाहेगा। जी हाँ, असित सेन साहब जाना चाहते थे, और अब इन्होंने फिल्मों से एज एन एक्टर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया और दोबारा से फोकस किया अपने डायरेक्शन पर। यहाँ इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया, कुछ हिट हुई तो कुछ फ्लॉप भी। कौन कौन सी फिल्मों के लिए इन्हें अवार्ड मिले और कौन कौन सी फिल्में ऐसी थी जिन्हें इन्होंने पूरे दिल से बनाया पर वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, इन सब के बारे में बातें करते रहेंगे। पर उससे पहले आपके दिलों का हाल जान लेते हैं।

0: महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।
4: सारा शहर मुझे 89.6 एफएम रेडियो महारानी के नाम से जानता है।
5: अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन?
6: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
7: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
8: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, कहाँ ना प्यार है आपको हमसे और हमको आपसे। तभी तो हर रोज आपके लिए कुछ डिफरेंट सा लेकर आने की कोशिश रहती है हमारी, और आप भी हमें इतना प्यार करते हैं कि तुरंत 89.6 को ट्यून इन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस अपने आज के स्टार की ओर, जो कि हैं असित सेन साहब, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बिमल रॉय साहब। इनको असिस्ट कर

था। अब ये वहां पर कुछ नॉवल से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए कि इन्होंने बंगाली नॉवल्स पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनाई और बंगाली फिल्म्स के रीमेक भी हिंदी में बनाया करते थे। पर बिमल रॉय के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम करने के बाद सोली इन्होंने कुछ फिल्मों को डायरेक्ट भी किया, जिसमें सफर, बैराग, अनाड़ी, ममता, अनोखी रात, खामोशी, ऐसी ना जाने कितनी फिल्मों का नाम शामिल है। कुछ फिल्में हिट हुई तो कुछ फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप भी हुई। हिट फिल्मों में सफर फिल्म का नाम शामिल है, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया। पर 1982 और 3 में आई फिल्म वकील बाबू और मेहंदी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि इनका एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन से भी दिल उतर गया और इन्होंने डायरेक्शन से अपने आप को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि ये फिल्मों को छोड़ रहे थे, पर फिल्में इन्हें नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि इन्हें अभी भी फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स का ऑफर मिल रहा था, जिनमें लोग अब इनके अंदाज को भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। वो जो स्लो वर्जन ऑफ डायलॉग डिलीवरी था इनका, दैट वॉज अमेजिंग। और क्योंकि इन्होंने अब काफी ज्यादा वेट भी पुट ऑन कर लिया था, इसलिए लोग इनके थ्रू आउट इनकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इंजॉय भी करने लगे थे। कभी फिल्मों में जासूस तो कभी वकील, तो कहीं पर ये एक पैम्पर करने वाले पापा के रूप में हमें नजर आ रहे थे। और इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक और भी नाम से जाना जाने लगा था, उस्ताद। ये सिंगल टेक रिएक्शन के उस्ताद थे। ये कहा जाता है कि जनरली ये अपने सारे कैरेक्टर्स को सिर्फ एक सिंगल टेक में ही डन कर दिया करते थे। पर वो कहते हैं ना कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ गम छुपा होता है। इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी काफी ज्यादा इफेक्टेड थी। क्या चल रहा था ये आपको बताऊंगी, तब तक आप एंजॉय कीजिए रीमेक वर्जन ऑफ मंगड़ा। मैं

0: जानी ये स्विच है, बिजली बचाने के लिए इसे ऑफ करना पड़ता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
2: यार एक बात बता, पानी पर जीएसटी लग गया है क्या?
3: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।

0: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा?
1: अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है तो एक प्याला पानी रखने में कैसा ऐतराज है?
0: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: हर आवाज में कहानी, हर चेहरे में जमाना, रात बाकी बात बाकी में बिखरेगा फिर वही दौर पुराना।
1: आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
2: Oh yeah, it's the one that we're not saving, y'all.

क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है, ये बात हम कह सकते हैं हमारे असित सेन साहब के लिए, क्योंकि इनकी सूरत के ही तो सब कायल हो गए थे। इनकी डायलॉग डिलीवरी, इनकी अदाएं, ये कुछ इतनी स्वीट हुआ करती थी कि हर कोई इन्हें फिल्म में लेना भी चाहता था। अब गोपी चंद कैरेक्टर को ही देख लीजिए ना, इन पर तो पूरी फिल्म ही बन गई थी। अलग बात है कि ये इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे, पर इनसे इंस्पायर्ड एक पूरी फिल्म बनी थी, ये छोटी बात तो नहीं है। जितना संघर्ष इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, किसी और की जिंदगी में होता तो शायद उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट ना होती, पर हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो गम छुपा होता है, उस गम को ओवरकम भी तो करना होता है। असित सेन परफेक्ट एग्जाम्पल थे इसी बात के। इन्होंने लाइफ में आई हर प्रॉब्लम को हंसते मुस्कुराते फेस किया, छोटी छोटी बातों से इंस्पिरेशन ली और उससे अपनी एक ऐसी इमेज बनाई इंडस्ट्री में कि असरानी और जगदीप जैसे कैरेक्टर्स को भी ये टक्कर देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में खड़े हो गए थे। खैर, जहां बात इनकी डायरेक्शन की थी तो वहां पर भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया। जब बात एक्टिंग की आई तो वहां पर भी इन्होंने झंडे गाड़ दिए भैया, क्योंकि पूरी 200 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने अपीयरेंस दिया है। वैसे जनरली हमने ये देखा है कि लाइफ में थोड़े से भी हर्डल्स हमारे सामने आते हैं तो वी प्रेफर टू क्विट, लेकिन असित ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स आए, कुछ ऐसी दिक्कतें भी थी जिसकी वजह से इन्हें एक बार को लगा कि शायद मैं फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, वहीं गोरखपुर में अपने स्टूडियो में ही काम करता रह जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा है तो पहले ही उन छोटी छोटी चीजों को कीजिए जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही इन्होंने किया। फोटोग्राफी में इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद ही तो इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर और फिर एक कॉमेडियन बनने का मौका मिला। तो लाइफ में कोई भी काम हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, और वो काम कब सीढ़ी बनकर आपको आपके मुकाम तक पहुंचा दे इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए जो भी काम मिले उसे दिल खोल के करना चाहिए। फिलहाल आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया और असित सेन साहब की इस जर्नी को हम सब ने थ्रू आउट एंजॉय किया। और इसी के साथ वक्त भी हो चला है मेरा आप सबसे विदा लेने का। जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और हाँ, गर्मी बहुत है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पास हमेशा एक वाटर बॉटल जरूर रखें। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ टाटा बाय बाय सायोनारा, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। छोड़े जा रही हूँ आपको कुछ खूब

0: एक गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, डिलीवरी के बाद कौन सी चीज बच्चा बचा पाएगा। कंफ्यूज्ड हैं? पर अब नहीं, सुनिए पोषण की पाठशाला आरजे अंजलि के साथ, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, जो देंगे आपके सभी सवालों के सही और सेहतमंद जवाब।
1: जिंदगी में भी हर खुशी में भी लगती है एक कमी,
0: तो बिल्कुल भी सुनना मत भूलिए हर शनिवार और रविवार सुबह 10 से 11 बजे पोषण की पाठशाला, क्योंकि हर माँ और बच्चे का अधिकार है सही पोषण और स्वस्थ जीवन।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई, जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वहाँ हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।
2: सोचना है जाना कहां, जाए वही ले जाए जहां।
1: तो थोड़ा फोन डाउन कीजिए और जिंदगी खुलकर जीना शुरू कीजिए। रेडियो महारानी कहता है, जिंदगी ऑनलाइन नहीं दिल से जी जाती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कदी
1: कुड़ी मैनू कदी।
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लौंडा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू आजा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
1: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
1: आवारा हूँ, आवारा
0: हूँ। समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
4: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: है अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किसे पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहे हैं।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: है अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आप मिल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों,
1: शादी तो बर्बादी है,
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है,
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय,
0: सुनो तो
1: ना,
0: सुनो तो, सुनो तो,
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कभी ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: तानू थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कोई कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
2: हाँ,
0: पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर आग ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।

0: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है, मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है, बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मतवाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। उस सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव, ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे श्री जी की सखी सुन करके उदासीन हो जाएगी? नहीं, जो भगवान को भी आदेश करते हैं वो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे, ध्यान रखना। बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की है, रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा, कैसे वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है, जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा, कुछ राधा नामयु कार्यम हेनुदिन मिलतम साधना घीस को, केवल केवल राधा राधा, परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, ये राधा नाम है। एक कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग तरंग

उन मोहिलिए बन जंतु बजावे जंत्र को। हाथ में वीणा लिए हुए राधा राधा राधा, बुद्धि थोड़े सब बंद हो जाती है चलना। ये वो देश है, बावरों का देश है वृंदावन, यहाँ ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जा रहा है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है, चाहे जिस भाव के जन हो यहाँ आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो